जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: का उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8

FM पर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं हूं गगन आपके साथ। आज क्या है, आज हमारे साथ कौन खास जुड़ रहे हैं, कौन मेहमान है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकारिता जगत से, आप पत्रकार हैं, अतुल शाह जी आपका नाम है और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। इनसे हम जानेंगे इनके अनुभव के बारे में, इनकी इस यात्रा के बारे में और आज के समय में पत्रकारिता का क्या रूप है और आप क्या सोचते हैं आज के पत्रकारों के बारे में। ये सारी बातें होने वाली हैं आज के हमारे खास मेहमान जो कि अतुल शाह जी हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत कुछ जानेंगे। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम में हूं नाचीज हर दिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पहले लिंक में हमने आपको बातें बताई कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार पुनः बता देता हूं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि पत्रकारिता जगत में काफी लंबा चौड़ा अनुभव है, 20 से 25 साल आपने पत्रकारिता जगत को दिए हैं। आपका नाम है अतुल शाह जी और कहते हैं, इनका इस्तकबाल करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि चार स्तंभ की बात होती है, पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है
1: न्यायपालिका
0: न्यायपालिका और चौथी है पत्रकारिता। ये छोटी सी आवाज आपने सुनी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल शाह जी। तो शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए श्रोताओं के लिए बहुत ही रोचक यात्रा होगी।
0: बेशक बेशक सर, हमें बड़ी खुशी है आपसे बात करके खुद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं होने वाली हैं, आपके अनुभव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर, जब मैं अनुभव का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ तो पत्रकारिता जगत में आपने 25 साल जैसे आपने हमें बताया 25 साल का जो अनुभव है वाकई बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये जो यात्रा अब तक रही है कैसी रही आपकी?
2: बहुत ही शानदार यात्रा रही है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने 1997 से दैनिक जागरण से अपना पत्रकारिता का सफर शुरू किया जो अनवरत 2021 तक जारी रहा।
0: सिर्फ एक संस्थान के साथ?
2: सिर्फ एक संस्थान के साथ जुड़ा रहा। और इसका एक खास कारण भी है कि बनारस में जो हमारे मुख्य संपादक हैं और दैनिक जागरण के निदेशक भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी, तो जब मैं अपने संस्थान में ब्यूरो चीफ था मुझे किसी एक जगह पर एक पत्रकार की नियुक्ति करनी थी। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आई थी, उसमें एक एप्लीकेशन थी जो मुझे सबसे ज्यादा अपील कर रही थी और उन सज्जन ने 7-8 जगह काम किया था 10 सालों में। मैं बहुत ही उत्साहित होकर जब अपने निदेशक जी के पास गया और उनको बताया कि ये एप्लीकेशन आई है, किंतु मैं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ और इन्हें मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने उस एप्लीकेशन को देखा और मुस्कुराए, बोले जब ये 7 जगह नहीं टिका तो तुम्हारे पास क्या टिकेगा।
0: जी।
2: तो मुझे समझ में आया टिकना भी जरूरी है, स्थायित्व से ही आपको जो है पहचान मिलती है। और निसंदेह हिंदी की पत्रकारिता में दैनिक जागरण नंबर 1 रहा है, तो उस मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था कि मैं किसी नंबर 2 अखबार में जाऊं। और मेरी बहुत ही मनमोहक यात्रा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी
2: और समाज को जानने को मिला है और मैं बहुत खुशनसीब लोगों में से हूँ जो मैं कुछ लोगों के लिए कर भी पाया।
0: क्या बात है। सो ये एक छोटा सा परिचय हमारे जो खास मेहमान है अतुल शाह जी जो कि पत्रकारिता जगत में 25 साल का अनुभव है और सबसे खास बात यह है कि एक संस्थान को ही इन्होंने 25 साल दिए हैं और संस्थान ने भी इनको बहुत कुछ दिया है, ये हम कह पा रहे हैं। इसलिए कह पा रहे हैं कि स्थायित्व यानी कि एक जगह लगकर जब आप काम करते हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, आपका एक नाम मार्केट में जाता है और लोग आपको जानते हैं और जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको हाथों हाथ दिया जाता है, आपका स्वागत इस्तकबाल किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और जानेंगे हमारे खास मेहमान जो कि आज जर्नलिस्ट हैं अतुल शाह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, जर्नलिस्ट हैं आप, हैं अतुल शाह जी, दैनिक जागरण के साथ। आप 25 साल का आपका

0: क्रिएशन रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आप स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, यानी कि फ्रीलांसर काम करते हैं, और फ्रीलांस जब काम करते हैं तो क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, सम्मान कितना मिलता है, और फ्रीलांस की जब बात आती है और जो एक व्यक्ति एक संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहा है, तो उसमें क्या अंतर है? सर, मेरा सवाल आपसे ये है,
1: जब आप किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारी प्रतिबद्धताएं भी रहती हैं, लिमिटेशंस भी रहती हैं, और आपको उनकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करना होता है। जब मैं फ्रीलांस करता हूं तो फ्री लगाई हुआ है, मैं स्वतंत्र हूं।
0: क्या बात!
1: मेरी सोच, मेरी लेखनी, मेरी कलम सब स्वतंत्र है। मैं किसी भी विषय पर लिख सकता हूं। मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरे लिखने से कहीं मेरे संस्थान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं कि यह व्यावसायिक दौर है, सभी संस्थान को अपने व्यावसायिक हितों को भी साधना पड़ता है। लेकिन अब मेरे साथ वो सारी लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं। और फिर भी जब आप किसी संस्थान से जुड़े होते हैं तो आपकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, और आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं। चूंकि अब हम 25 साल से जुड़े हुए हैं और इतना अनुभव है और छोटे से क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब मेरी खुद की पहचान है।
0: क्या बहुत खुश!
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ काम किए हुए लोग और मेरे अंडर में काम किए हुए लोग आज सभी वहां के जितने भी नामी अखबार हैं उसके ब्यूरो चीफ हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूब।
1: तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है, या मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे साथ मेरे अंडर में काम किए लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं,
0: पहुंचे हुए हैं। असर, आपने तो अपना अनुभव साझा किया। असर, हम समाज में ये भी देखते हैं कि लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, लेकिन उनकी पास्ट में कोई पहचान रही नहीं है, जिसकी वजह से उनको आगे तवज्जो नहीं मिल पाती, या यूं कहें कि वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मैं समझ सकता हूं आपसे बात करकर कि सबसे पहले आप अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या अपना संस्थान खोलना चाहते हैं, तब जाकर आपकी मार्केट वैल्यू होती है। क्या कहना चाहेंगे?
1: निश्चित, लेकिन प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता है, तो भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको आपकी पहचान अवश्य मिलेगी। आप संस्थान से अगर जुड़े होते हैं तो ये काम आपको थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एक बड़ा बैनर मिलता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और आप अपने आप करते हैं तो थोड़ा आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, बातों बातों में एक बात निकलकर यही सामने आई है कि टैलेंट यानी कि क्वालिटीज, प्रतिभा अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर दिक्कत परेशानी आपके सामने जरूर आएंगी, लेकिन शनै शनै धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। वो प्रतिभा, वो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर, ये हम जानेंगे जरूर सर से, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दैनिक जागरण में 25 साल तक जुड़े रहे, आप हैं अतुल शाह जी, बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो ये बातों का सिलसिला लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है अतुल शाह जी, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और दैनिक जागरण के साथ आपका एसोसिएशन 25 सालों का रहा है। तो इतने गुणीजन जब लोग हमारे सामने आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इशारा किया था, चूंकि सर ने जब बात रखी थी कि प्रतिभा क्वालिटीज गुणों के बारे में बात हो रही थी, तो सर मैं यही जानना चाहता हूं कि एक अच्छे पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर वो कौन कौन सी प्रतिभाएं होनी चाहिए, वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसे हम कह सकते हैं कि वो पत्रकार है, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते।
1: सबसे पहले सब तो ईमानदारी आता है, जो पत्रकार में नहीं समाज के हर विधा हर अंग में होना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार हों और ईमानदारी से काम करें, आईने की तरह एकदम स्पष्ट हों। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर के लिए चिकित्सक बहुत जरूरी होता है, उस तरह से समाज के लिए पत्रकार की भूमिका होती है। लेकिन हम धीरे धीरे मिशन से प्रोफेशन के उस दौर में पहुंच गए हैं कि जैसे आज आपके पाठक को क्या चाहिए आप इस पे फोकस करते हैं
0: जी।
1: आप ये फोकस नहीं करते कि उसे क्या चाहिए होना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर से मरीज उम्मीद करता है कि उसे मीठी दवा दी जाए
0: जी।
1: लेकिन अगर डॉक्टर जानता है कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है, इसे इंजेक्शन की जरूरत है, इसे कड़वी दवा की जरूरत है, तो वो देता है। तो आजकल हमको पत्रकारिता में भी देख रहे हैं कि लोग पाठकों की रुचि के अनुसार चीजें उनको परोस रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आज समाज को किस चीज की जरूरत है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे तभी समाज का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए और देखना चाहिए कि हम समाज हित में क्या कर सकते हैं, वो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए।
0: बहुत खूब सर, आपने जो बात कही वाकई बिल्कुल खरी बात है और सच बात है कि ईमानदार होना चाहिए। और किसी भी पेशे में अगर हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जो खुशबू है वो फिजाओं में चारों तरफ फैलती ही फैलती है। आज के समय में हम देखें, पत्रकारिता ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियां आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं कहानियां बन रही होती हैं। क्योंकि पत्रकारिता का विषय है और आप एक पत्रकार हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि पेड न्यूज की बात होती है, अगर हमें कुछ रुपया पैसा मिल गया तो हम खबर दबा देंगे, नहीं मिला तो शायद हम उस खबर को उछाल देंगे। ये मैं छोटे से लेकर बड़े बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूं, यहां हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना ही आप इस बात को यहां जिक्र करेंगे कि, लेकिन ये सच है कि इसके साथ ही मैं अगर दूसरी बात पर भी आता हूं कि अभी हम जो फ्रीलांस की बात कर रहे थे सर, चूंकि आपके पास तो अनुभव है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको वो बारीकियां पता है, वो एथिक्स पता है, वो मान मर्यादा पता है। मैं एक 12th पास हूं या ग्रेजुएट हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई साहब की इनकम हो रही है, भाई साहब अगर किसी का रिपोर्टिंग कर आ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तो कुछ रुपए पैसे आ जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पत्रकारिता के क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास जानकारी का अभाव है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
1: मैंने इससे पहले भी एक शब्द का प्रयोग किया था कि हम मिशन से प्रोफेशन के दौर में पहुंच चुके हैं।
0: ठीक है,
1: जब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महापुरुषों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो उनका एक जरूर सोच रही थी और जरूर एक उद्देश्य रहा था कि हमें पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं
0: जी।
1: और सिर्फ उस समय के उद्देश्य था कि हमको समाज के हितों के लिए काम करना है। आज ये सारा बिजनेस ग्लैमराइज हो चुका है, उसमें बाजारवाद बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका है
0: जी।
1: आज जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें सिर्फ
0: सेवा करनी है, ऐसा
1: सेवा
0: कुछ नहीं।
1: करनी है उन्हें सिर्फ ऐश्वर्य और उनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे इसीलिए आज पत्रकार सम्मान खोते जा रहे हैं,
0: खोते जा रहे हैं।
1: 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों के लिए इतना सम्मान होता था कि कोई भी आयोजन या कोई भी सभा या कोई भी कार्यक्रम तब तक शुरू नहीं होता था जब तक पत्रकार नहीं पहुंच जाते थे।
0: सही कहा।
1: और कहीं भी अगर किसी भी यूनियन और मालिकों में बात हो रही है तो वो यूनियन चाहती थी कि पहले पत्रकार हों, मजदूर और मालिक में बात हो रही है तो लोग चाहते थे कि नहीं पत्रकारों की उपस्थिति में हो। और आज उल्टा हो गया है, पत्रकारों को देखते ही लोग मारो मारो भगाओ भगाओ
0: जी जी
1: चिल्लाओ चिल्लाओ का दौर आ गया है कि ये जो है
0: जिम्मेदार हम सभी हैं।
1: इसके जिम्मेदार पूंजीवाद और बाजारवाद है। और जब से पत्रकारिता जो है संस्थागत हो गई है और इसको व्यवसाय बना लिया गया है और ये सेवी में रजिस्टर्ड होने लग गई है, तब से इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। और जल्दी से इसका इलाज नहीं किया गया तो वो हम अपने सम्मान को खो देंगे जो हमें हमारे लोगों ने दिलाया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जल्दी से अगर इसका इलाज नहीं किया गया या ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को नहीं

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। मेरे साथ आज के जो मेहमान है बिंदास, सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही हैं, क्योंकि पत्रकार का यही काम है कि वो बिंदास बात रखे, जमाने के सामने सच के साथ वो बातें हमारे सामने आए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल शाह जी, जो की 25 साल का अनुभव रहा है, दैनिक जागरण से आपका एसोसिएशन रहा है। बहुत सारी बातें हो रही है कि पत्रकार के अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज के समय में जो पत्रकारिता है वो कितनी बदल गई, ये सारी बातें हम सर से जान रहे हैं। सब ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि एक पत्रकार के अंदर ईमानदारी के साथ वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकता है, समाज में एक जागरूकता ला सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम ये देखते हैं कि किसी के पास अनुभव नहीं है और ज्ञान नहीं है पत्रकारिता का, और जिसकी एक गलती की वजह से दंगा भड़क सकता है, माहौल खराब हो सकता है। वर्तमान समय में हम ये भी देख रहे हैं, सरकार को हम यहाँ लाना नहीं भूलेंगे, कि सरकार ने शिकंजा भी कसा है। जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो उस संबंध में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे?
1: आजादी की अभिव्यक्ति का हम लोग देख रहे हैं कि अब दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, जबकि इसकी सीमाएं बहुत पहले से निर्धारित है। और बचपन में मैंने किसी इंग्लिश लेखक की कविता पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें यह था कि आपकी आजादी का मतलब है कि आप अपनी छड़ी घुमाएं लेकिन वो किसी की नाक से न टकराए।
0: क्या बात है।
1: तो आजादी की अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि अभिव्यक्ति आप उतनी ही स्वतंत्र हैं कि जिससे दूसरा कोई हर्ट न हो, आहत न हो और किसी का नुकसान न होता हो।
0: क्या बात
1: है, बहुत। और जो वर्तमान दौर में अभी पत्रकार बने हैं या आगे बनेंगे, उनके लिए मेरा एक यही संदेश है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या कहीं इंटरव्यू करने जाते हैं या रिपोर्टिंग करने जाते हैं,

0: तो आपको पहले उसके बारे में पहले से स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आप किस क्षेत्र, वो किस क्षेत्र में है उसके बारे में अगर आप जान के जाएंगे तो आप उससे बेहतर सवाल कर सकेंगे और वो जो बता रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और जैसे हम लोगों के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था कि एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, उसी तरह से पत्रकार को भी जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा है उससे उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए,
1: होनी चाहिए,
0: चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सामाजिक हो या वो राजनीति से संबंधित हो।
1: तभी बात करने में मजा आएगा,
0: तभी मजा आएगा। मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं नया नया पत्रकार हुआ था तो हमारे यहाँ उस समय के केंद्रीय कारागार मंत्री का हमारे क्षेत्र में दौरा हुआ था, हम भी उत्साहित थे और वो मंत्री जी भी नए नए बने थे, वो भी बहुत उत्साहित मजेदार बातें हो रही थी। मैंने पूछा, मंत्री जी जब आपसे, आप कारागार मंत्री बने हैं तो आपने अपने कारागार के लिए क्या क्या किया है? वो बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेमेंडस चेंज किए हैं, हमने अब कैदियों की सुविधा के लिए टीवी लगवा दिया है, उनको खाना अच्छा मिलता है, उनको दाल मिलती है, उनको रोटी मिलती है, उनको घी मिलती है, उनको मैगजीन मिलती है, हमने कूलर की व्यवस्था भी की है और हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, हफ्ते में एक दिन वो टीवी भी देख सकते हैं। मैंने कहा, मंत्री जी आपने तो इतना अच्छा काम किया है और हम जेल के अंदर इतनी सुविधाएं हैं और बाहर तो लोग बिना खाए मर रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हम छोटा सा अपराध करें और जेल चले जाएं। मंत्री जी घबरा के बोले, भैया फंसाओ मत, मैं नया नया मंत्री बना।
1: उसे खासे तो जरूर पैदा हो गया क्योंकि आपने बाहर से ज्यादा सुख सुविधाएं अंदर दे रखी हैं।
0: तो भाई आप छोटा सा क्राइम करके अंदर जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगे जो बाहर आपको उपलब्ध नहीं है।
1: तो इस बात का रोचक यही है कि सर की कहा भी जाता है, जो आपने एक वाक्य का यहाँ जिक्र किया, अक्सर हमने सुना भी है कि तोल मोल की बोलना चाहिए कि क्योंकि जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, तो इस बात को अगर हम सब ध्यान रखेंगे कि तोल मोल कर बोलेंगे तो हमारी शब्दों की गरिमा बनी रहेगी, माहौल अच्छा बना रहेगा और पत्रकारिता की जो एक भूमिका है, या यूं कहें कि पत्रकार की जो एक भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों के ऊपर, सच्ची अच्छी बात रखे, अगर कोई बात कड़वी भी है तो बहुत सदे हुए शब्दों में रखे ताकि एक माहौल अच्छा बनकर रहे। तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पेशे से पत्रकार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल, मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम जो बात कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है, और पहले के समय के बारे में बातें की, आज के समय के बारे में बातें की। पहले का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 25 सालों का अनुभव है। हमारे जो खास मेहमान है आप है अतुल शाह जी। 25 साल का जब अनुभव है, वाकई बहुत बड़ा अनुभव है। तो उस समय क्या माहौल था, आज के समय में क्या माहौल है, और हमें किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर, जब किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि आपके साहबजादे शादा विश्वविद्यालय के बास्कॉम डिपार्टमेंट में यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ फादर, आप एक पिता होने के नाते उनको क्या शिक्षा देते हैं, किन किन बारीकियों को आप बताते हैं, समझाते हैं?
1: ये मेरे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि मेरे पुत्र जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, आज मुझे जो है साक्षात्कार देने का मौका मिला है। और उनकी रुचि थी पत्रकारिता में
0: जी,
1: है ना। मैं पत्रकार हूँ इसलिए मैंने उसके इस आने के लिए प्रेरित नहीं किया है, बल्कि वह स्वतः प्रेरित थे। उनकी मैं जब लिखने की शैली को देखता था तो मुझे लगता था कि उन्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। जबकि आज अधिकांश अभिभावकों का होता है कि वो उनका बेटा डॉक्टर बने
0: जी,
1: इंजीनियर बने या किसी और भी तरह जाए। लेकिन हम आज दौर बदल चुका है, हम अपने बच्चों को अपना करियर चुनने की पूरी आजादी दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। तो मैं अपने बच्चे से यही उम्मीद करूंगा कि वो एक अच्छा नागरिक बने। अगर वो अच्छा नागरिक बनता है तो सारी खूबियां सारी विशेषताएं उसके अंदर स्वतः आ जाएंगी। और उसे अपने पैसे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और सिर्फ पैसे के लिए अगर वो काम करना चाहेंगे तो उससे बेहतर है कि वो ना करें।
0: क्या बात है?
1: अगर हम समाज को कुछ दे सकते हैं तो यही हमारी उपलब्धि होगी। और मैं चाहता हूं कि मैं 25 साल के अनुभव को उनको जरूर जो है दूंगा कि वो जो है आगे बढ़े और जरूर समाज को एक नई दिशा दें।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लिसनर्स, मैं समझता हूँ कि यही संदेश जो अपने पुत्र को वो दे रहे हैं, हमारे खास मेहमान, हर एक बच्चे के लिए ये एक छोटा सा संदेश है सर की तरफ से, कि इन बातों को भी अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे, अमल में लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और असल मायने में, क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो ये काम अच्छा करेंगे कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर रखें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए। तो अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो इन बातों को सीखिए, समझिए और अमल में लेकर आइए, जिन बातों का जिक्र सर ने यहाँ किया है। तो सर, यहाँ पर वक्त हो चुका है आपसे अनुमति ले लेने का, और ये जो चर्चा रही वाकई बहुत अच्छी चर्चा रही, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला है आपसे। और बस यही कहूंगा कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप ऐसे ही अपने ज्ञान से हम सबको यूं ही रोशन करते रहें।
1: धन्यवाद गगन जी, बहुत अच्छा लगा। और हमने पत्रकारिता में उस समय से आज तक का सफर तय किया है जब हमको किसी अपनी न्यूज को अपने सेंटर पे भेजने में 2 दिन लगते थे और समाचार 3 दिन बाद प्रकाशित होते थे। फिर भी उनकी उस समय अच्छी भूमिका होती थी क्योंकि कुछ अच्छा लेसन मिलता था। आज जल्दी जल्दी का दौर है, त्वरित का दौर है, और ब्रेकिंग न्यूज का दौर है, और उसी कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही
0: हैं। क्या बात,
1: तो हमें जल्दी के चक्कर में जो है फायदे के चक्कर में कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए, और समाज हित सर्वोपरि।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, वाकई बहुत खूबसूरत। आपके साथ ये चर्चा बहुत अच्छी रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लिसनर्स इस चर्चा से लाभ जरूर उठाएंगे, और 0120406025 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर कि ये विशेष वार्ता आपको कैसी लगी। यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस वार्ता से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। खासकर हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या इस फील्ड में भी नहीं है लेकिन इन बातों से तो जरूर आप सीख लेंगे कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। जाते जाते सर, कोई एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, सुनना सुनाना चाहते हैं, तो एक गाना हम आपके पसंद का अपने लिसनर्स को जरूर सुनाना चाहेंगे।
1: मैं चाहूंगा कि अजीब दास्तां है ये।
0: क्या बात है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। तो चलिए, वक्त है यहां पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, अनुमति ले लेने का। ये चर्चा कैसी रही बताइएगा जरूर। तो सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
1: शुक्रिया।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम नाथ दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:11 हो चुके हैं, 13 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। पिछले 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर हमने थोड़ा गर्म महसूस किया NCR, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शाम तक आते आते रिमझिम रिमझिम बारिश हो जाए, क्योंकि धूप आंख मिचोली खेलती हुई नजर आ रही है कहीं कहीं। ऐसे मौसम में बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा, यानी कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को पूरी करेगा। पानी भरपूर पीजिएगा, नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी का आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो जिसमें वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, तरबूज खा सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, खीरे आप खा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हमने लोगों को देखा है कि लोग अपने घर के बाहर पानी की व्यवस्था करते हैं उन बेजुबान जानवरों के लिए, है ना। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि चारे की भी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि वो लोग बड़े खुश होते हैं जिन्होंने एक पौधा लगाया, आज वही पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि पेड़ के नीचे लोग अक्सर आकर खड़े होते हैं, सुस्ताते हैं, अपनी गाड़ियां पार करते हैं। हम सोसाइटी से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ देंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिल को एक सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल है छाप तिलक सब छीनी री, मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वर्स सनी 2। आइए सुनते हैं छाप तिलक, ऑल ऑन सुरोशादा 90.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को माँ के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
1: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
0: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM पर मैं हूं गगन आपके साथ। सुनो शारदा 90.8 FM पर मैं हूं गगन आपके साथ और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 13 तारीख, 9:23 हो चुके हैं। हमारे आसपास के खास उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। खास बात निकल कर ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में बातें की थी, कुछ अपील की थी कि सोने की खरीद को टालें, ईंधन की बचत को करें और वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के बारे में बात की, विदेश यात्रा से बचें, स्वदेशी उत्पाद अपनाएं, खाने के तेल का उपयोग घटाएं। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने देखा कि सोशल मीडिया पर यूं कहें कि बाढ़ सी आ गई। लोगों ने एक दूसरे पर बात रखना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी इस मामले में पहल की है। उन्होंने भी सोचा है कि क्यों ना हम शुरुआत हम खुद से करें और उसके बाद आपसे, यानी कि आपसे, हमसे, हम सबसे उम्मीद की जा रही है। और यही वजह कि भाई मैं अपनी बात बताऊं कि अगर मैं फरीदाबाद से आ रहा हूं तो हम लोग शेयर करके आते हैं अपनी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, जो कार है, और इस तरीके से समय बचता है, पेट्रोल डीजल बचता है और बहुत कुछ आसान हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि काफिले को छोटा किया जा रहा है, विदेशी दौरा रद्द किया जा रहा है और जो अपील 5 राज्यों में की थी वहाँ से, मतलब इस तरीके से वो एक्शन भी शुरू हो चुका है 5 राज्यों में। अब उत्तर प्रदेश में क्या खास हो रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि सप्ताह में 2 दिन का होगा वर्क फ्रॉम होम और पहल की जा चुकी है और कंपनियों को आदेश भी दे दिया गया है। तो इसके बारे में मालूमात कर सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी उस दायरे में आ रही है या आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी ही आएंगी। सो प्लीज़ अपने आप को अलर्ट रखिएगा, तैयार रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:32 हो चुके हैं। 13 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल हम बात करते हैं कि नीट परीक्षा के बारे में। अभी हाल फिलहाल में हमने सुना उससे रिलेटेड भी अपडेट हमारे सामने आई, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में NTA ने पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद 3 मई को जो परीक्षा हुई थी अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि ये पेपर लीक हुआ था। नीट 2026 का पेपर लीक हुआ था और CBI इसमें जांच करेगी और कुछ गिरफ्तारियां हो भी रही हैं और अपडेट ये भी आ रही है कि कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि दोबारा होने वाली जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी नया आवेदन या एक्स्ट्रा परीक्षा शुल्क अब उनको नहीं देना होगा, यानी कि इसी में ही वो काम होगा। और जो संभावित तारीख है, यानी कि दोबारा परीक्षा का जो स्केड्यूल है, नई एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख जल्दी आधिकारिक जो वेबसाइट है

ये आशा करते हैं कि पेपर लीक होना एक बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है, सरकार भी यही कहती है। आइए हम सब मिलकर अपनी इस परीक्षा की दोबारा से तैयारी करें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी। सुनो
2: शारदा। हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जहाज हम बनाते थे बचपन में बनाते थे, जहाज को हम उड़ाते थे। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ। गुड मॉर्निंग।
1: हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अक्सर हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, और यहाँ तक हमने देखा है कि जनधन की हानि होती है। ऑन रोड अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना। अगर कोई बात है, दिक्कत परेशानी है, तो वही बात तरीके से रख सकते हैं। कुछ लोग तलवारबाजी कर लेते हैं, मतलब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे कि धन की हानि, इंसान की हानि, समय की हानि। और सोचिए, दिमाग लगाइए, गगन के पास इतना ही था। ये क्या था? नहीं, बस बस का मजाक किया था। वैसे गगन ने बहुत अच्छी बात की, समझदारी से आगे बढ़िए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये हु क्या कह रहा है? हु बोले तो, अरे वो WHO। अच्छा, ऐसे आ रहे हो, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक अपडेट हमारे सामने। तो मुझे लगा कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम हमेशा आपको अपडेट करते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। खबर सामने आ रही है कि दुनिया भर में हंता वायरस के दस्तक देने से थोड़ा सा हड़कंप मचा है, और ये जो मरीज हैं वो 11 हो चुके हैं। इतना बड़ा देश है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सोचना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं डॉक्टर्स के 42 दिन क्वारंटाइन अपने आप को रखें, और जो गाइडलाइन है ये कहाँ से आता है, क्या वायरस है? तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हंता वायरस आम तौर पर चूहों और कुतरने वाली जीवों के जरिए इंसानों में फैलता है। इसके अलावा लेकिन एंडीज स्ट्रेन इसकी एक ऐसी किस्म है जो इंसान से इंसान में भी फैलती है। बस आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इसके बारे में और भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। डरने घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना से भी हम डरे और अलर्ट भी रहे, लेकिन लापरवाही नहीं बरते। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:52 हो चुके हैं, 13 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात ये कि स्कूल्स के कॉलेजेस के यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 10th के 12th के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। 12th के बाद एक भागदौड़ शुरू होती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रीम लूँ, कौन सा कॉलेज चुनूँ, कौन सा विश्वविद्यालय चुनूँ ताकि उसको एक अच्छा माहौल मिल सके, पढ़ने पढ़ाने की बातें हों, ज़िंदगी को जीने की बातें हों, मोटिवेशन मिल सके, पैसा मिल सके। भाई पैसा तो आपको तभी मिलेगा जब अपनी तरीके से अच्छी तरीके से इंटरव्यू फाइट करेंगे, जब आप अपने आप को तराश लेंगे। हाँ, शारदा विश्वविद्यालय यही काम करता है कि हम आपको अप टू डेट रखते हैं और हम आपको राशने का काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। एक बार जब आप यहां आएंगे तो बहुत सारी चीजें आप मालूम कर यहां से आप जा सकते हैं, ऑनलाइन आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि शारदा विश्वविद्यालय का माहौल कैसा है, प्लेसमेंट के बारे में जान सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने के बारे में जान सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। चलिए, जब मैं पढ़ने पढ़ाने का जिक्र कर रहा था तो मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि नीट के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें सख्त सज़ा भी है, 10 साल तक की जेल है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। और वहीं चीन की खबर भी सामने आ रही थी कि चीन में वहाँ पेपर लीक नहीं होता क्योंकि जो पेपर्स हैं वो जेल में छपाई होती है। मतलब सोचना पड़ेगा गगन। हाँ, सोचिए इसके बारे में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और वक्त के साथ मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारी जो काया है उसको आप निरोग रखें, हम सब स्वस्थ रहें और ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। राम राम दोस्त, लाभ सत श्री अकाल आदाब नमस्कार, मैं हूं गगन आपके साथ लेकर आपका अपना वही कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में दिल की हार्दिक गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस डर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है? क्या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी? हमारे साथ हैं इस चर्चा में टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। तो सुनीता जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में फिर से जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर भी फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात करी। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बेटियाँ आपके बेटी की उम्र की हैं, और आप इस बात को सही तरीके से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर एक चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मधुर आवाज आपने सुनी, ये मधुर आवाज है, हमारे साथ है हमारी टीकन भाभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है? टीकन भाभी क्या कहती हैं आप?
2: मेरा सीधा जवाब है नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती है। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, जैसे मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पे डाल देना गलत है। विज्ञान यही कहता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वो साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: देखिए, इसीलिए हम टीकन भाभी को अपने इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि टीकन भाभी बड़ी अनुभवी हैं और तथ्यों पर आधारित बातों को आपके सामने लेकर आ रही है। तो दोस्तों, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल मेरा सुनीता जी से है कि बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सबसे जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, और यही वजह है कि बाचपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है, पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी वे माँ बनी हैं। एक गवाह तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्भ से माँ है। यह अफवाह को सीधे चुनौती देता है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत न बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि ये सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घर तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुल के बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेजी पकड़ती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है और माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
2: इसीलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं है, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: दोस्तों, ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों? बाद में ले लेंगे।
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये जो बाद में देखे वाली चीज है ना, वो होनी नहीं चाहिए। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। यह टीका स्वस्थ बच्ची को इसीलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम से कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: भाई, आगे का सवाल पूछने से पहले मैं आप दोनों की तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जो कि तथ्यों पर आधारित है। अनुभव के आधार पर हम बातें आप तक, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार आ जाए तो? टीकन देवी, क्या कहेंगे आप?
2: इंजेक्शन लगने के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन या हल्का बुखार, ये कई टीकों में होता रहता है, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: टीकन भाभी, अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है सुनीता, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: बिल्कुल बहुत सही बात दोस्तों टीकन भाभी ने कही है, और यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि तथ्यों पर आधारित बातें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक है कि HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य ये कहता है कि उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है दोस्तों। दूसरा मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य कहते हैं कि आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वो मां है। एक और मिथक की बात करते हैं, अभी छोटी है बाद में देखेंगे। तथ्य कहते हैं कि समय पर सुरक्षा का ही महत्व है, 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। अगला मिथक सामने आता है कि मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं है। भाई वैज्ञानिक कहते हैं, तथ्य कहते हैं कि मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है। सुनीता जी आप क्या कहते हैं?
1: जब आप ऐसे एक एक करके बात बताते हैं ना तो बात बैठती है, नहीं तो घर में तो सब गड़बड़ हो जाता है।
2: इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़े में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा मगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: तो उससे कहना कि क्योंकि कुछ बीमारी का बचाव पहले से किया जा सकता है, ये टीका तुम्हें भविष्य में होने वाली एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो ये पूछे कि क्या इससे मेरे पीरियड्स पे असर होगा, तो उसको बता देना कि नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता है। और अगर वो तुमसे ये पूछे कि क्या इससे आगे चलकर मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, तो उसको ये जरूर कहना कि ये सब झूठी अफवाहें हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही टीकन भाभी। दोस्तों ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं समझा कर लिया जा रहा है।
1: पर हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का एक कदम है, उसे अधिकार है ये पूछने का कि ये किस लिए है, ये भी सेहत शिक्षा का ही हिस्सा है।
0: भाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन भाभी, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की, पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पे डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। फिर वो बोली ठीक है अम्मा अब हम साथ चलेंगे।
2: देखा सुनीता, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर एकदम से आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौंय चढ़ा लेते हैं।
2: बस तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ, स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी ही कम चलेगी।
0: बिल्कुल। अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। दोस्तों आधिकारिक जन संदेशों में ये भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए। दोस्तों
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है, अब हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में तो कभी नहीं सोचा।
2: वही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं करती। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी

0: शरीर की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है ना, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा ऐसा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
2: वाकई बहुत अच्छी बातें सुनीता जी आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही। दोस्तों यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूवेन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं दोस्तों, पर सच टिकाऊ होता है।

0: और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है। जैसे कि सुनीता जी ने, टीकन जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक बात रखी कि लड़कियों की आवाज को हम दबा देते हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है कि ना पूछना ही सबसे बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हो तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: और टीकन भाभी, मैं तो यही कहूंगा कि उनको सुनना होगा सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जी बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है दोस्तों, जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
2: एक और बात मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और एक अनुभव के आधार पर दोस्तों, मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। जब टीकन भाभी, सुनीता जी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि पुरुषों को भी इस प्रकार की भागीदारी दर्ज करनी चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से मुलाकात करें दोस्तों। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर इसी रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा। अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिरी में रखते हैं।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ में चलना चाहिए, तभी असली लाभ है। तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुंचेगा।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही ले। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। नंबर एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। नंबर दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। नंबर तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। नंबर चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। नंबर पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। नंबर छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सातवां नंबर, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं। क्यों सुनीता जी?
2: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
1: बस सुनीता, ऐसा ही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझा पाना भी है। अब हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत से ही
0: तो लाभ कई। तो श्रोताओं, ये विशेष कार्यक्रम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। टीकन भाभी का, सुनीता जी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। सब खुश रहें, निरोग रहें। ऐसे विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: चन चन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को

0: लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशाद 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अब्बा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: बुखार में तेरी पड़ेगी भारी, और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है। हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर मैं नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तो जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं आप?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजी साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। Suno

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नाउ लिसन गर्ल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई ओनली वांट अ शर्ट।

0: स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 0120406020 पर और विजिट करिए www.sharda.ac

Jotin, Sharda University, Knowledge Park, Greater Noida, Uttar Pradesh. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे हर्बल पौधों की खेती के बारे में और साथ ही साथ आज के समय में जो सिंचाई करने की आधुनिक नई तकनीकी जो आई है उन तकनीकियों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ लोक संगीत के माध्यम से यानी कि उपदेश रागनी के माध्यम से आपका मनोरंजन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बल पौधों की खेती के बारे में। किसान मित्रों, अगर आप कम लागत में अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो परंपरागत खेती की जगह हर्बल पौधों की खेती कर सकते हैं। जड़ी बूटी और औषधीय पौधों को उगाना और उनकी देखभाल करना ही हर्बल खेती है। हर्बल पौधों में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इन पौधों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे देश में कई औषधीय पौधे काफी मशहूर हैं जो आप भी जानते होंगे। इनमें अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर का नाम प्रमुख है। किसान मित्रों, बदलते दौर में औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण किसानों के लिए भी इनकी खेती का अवसर तैयार हो गया है, इसीलिए किसान भाई हर्बल पौधों की खेती को अपनी कमाई का एक अच्छा जरिया बना सकते हैं। किसान मित्रों, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वर्तमान में औषधीय पौधों के सतत विकास, प्रबंधन और संरक्षण में पूरे देश में काम कर रहा है। इसके तहत किसान मित्रों को कई तरह की सहायता दी जा रही है, जिसमें किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाई की स्थापना करना, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना तैयार करना शामिल है। किसान मित्रों, एक आकलन के मुताबिक देश में हर्बल उत्पादों का बाजार करीब 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें सालाना हर्बल पौधों के लिए प्रति एकड़ बुआई का रकबा अभी भी इसके मुकाबले काफी कम है। हालांकि ये सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है। किसान मित्रों, परंपरागत खेती की तुलना में हर्बल पौधों की खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ है, क्योंकि इन फसलों को परंपरागत फसलों की अपेक्षा कम खाद पानी और ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं पड़ती। औषधीय पौधों का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है, जिसकी मांग देश की आयुर्वेदिक कंपनियों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रहती है। तो किसान मित्रों, आप भी हर्बल पौधों की खेती करके कम लागत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही हर्बल पौधों की खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं तरुण वाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप तरुण वाल्यान से ये देशभक्ति रागनी सुन रहे थे। किसान मित्रों, पानी हमारे जीवन के साथ साथ खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि में पानी का उपयोग व्यापक स्तर पर फसलों की बुआई से लेकर उसकी कटाई से पहले तक, सिंचाई, कीटनाशक छिड़काव और बीज तैयार करने में किया जाता है। लेकिन सिंचाई में सबसे अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी पौधों के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं के संचालन में आवश्यक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि में लगभग 80% भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। अगर भूमिगत जल का इसी दर से दोहन होता रहा तो यह एक सूखे जैसी भयानक स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे हमारा जनजीवन और कृषि दोनों ही बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सिंचाई की नई तकनीकियां ईजाद की गई हैं, जो पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाते हुए फसल की पैदावार भी बढ़ाती हैं, और इन तकनीकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। तो किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं पूजा शर्मा।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा से ये देशभक्ति रागनी। और अब किसान मित्रों बात करते हैं कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की नई तकनीकों में बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई विधि प्रमुख है। इनमें बूंद बूंद सिंचाई विधि प्रमुख रूप से बागवानी, सब्जियों और पंक्ति में बोई गई फसलों में अपनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा किसान अपने खेत में पानी के उपयोग को बहुत हद तक कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि में पानी के उपयोग की दक्षता 90-95% तक मानी गई है और इस विधि द्वारा किसान भाई सतह और उपसतह दोनों तरीकों से फसल में सिंचाई कर सकते हैं। ये विधि पानी को पौधों की जड़ पर बूंद बूंद करके पानी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार फव्वारा विधि में फसलों को कृत्रिम विधि के पानी के प्रयोग की दक्षता 80-85% तक मानी जाती है। ये विधि किसी भी प्रकार की फसलों में अपनाई जा सकती है, जैसे बागवानी, दलहन, तिलहन, अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का। किसान मित्रों, यहाँ पर एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों विधियाँ फसलों में लगने वाले कीटनाशक और घास नाशक को मारने वाली दवाइयों के प्रयोग को लगभग 30% तक कम कर देती हैं और फसलों की पैदावार को 20% तक बढ़ा देती हैं। तो आप भी कृषि में आधुनिक सिंचाई की जो नई विधियां हैं उनका उपयोग करें, ताकि आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे और खेती में लागत कम आए और आपको फायदा ज्यादा हो। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। और देखिए, अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीवी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है

0: अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की, किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की, फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई हंसराज क्वारी कन्या न्यू सोचे कित जोड़ी कावर पावे, हे ईश्वर तेरा भजन करूं जो मेरी जोट मिलावे। ऐसे सोचते सोचते बियाबान जंगल में जहां सत्यवान पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा था, सावित्री की निगाह घूम गई और उसकी शान को देख करके मन मोहित हो गई। भला के कहने लगी लक्कड़हारे से,

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। सुनो शारदा 90.8 FM आपसे यही उम्मीद करता है, यही आपसे कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और यही एक वजह है कि महिलाओं से जग है और महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, अच्छी तरीके से निभाती भी है। सोचिए, कल्पना करिए कि अगर आपके घर में कोई महिला नहीं है जो व्यवस्थाएं वो निभा सकती हैं, वो शायद आप और मैं नहीं निभा पाऊंगा। तो इसीलिए हर एक दुख को, दर्द को सहते हुए वो आगे बढ़ती हैं। और अगर उनको कहीं कोई दुख है तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम उनसे बात करें, उनके दुख को दूर करने की कोशिश करें और यही एक काम भारत सरकार करती है उनके अधिकारों को बताकर, उनके अधिकारों को हम सबके सामने लाकर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कानूनी अधिकार के विषय में। पहले दो भागों में हमने कानूनी अधिकार के विषय में बात की, तो उसी के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ कोई हिंसा ना हो, हम उनका ख्याल रखें हर तरीके से, भावनात्मक तौर पर उनसे बात कर अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो हम उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। तो महिलाओं के प्रति हिंसा के विषय में बात सामने आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से रूप हैं जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा में शामिल हैं, जैसे पत्नी से मारपीट, बालिकाओं से यौन दुर्व्यवहार, दहेज से संबंधित समस्याएं, बलात्कार एवं वैवाहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अनैतिक व्यापार। अब बात करते हैं महिलाओं के प्रति हिंसा के विषय में। महिलाओं पर हिंसा का अभिप्राय जेंडर के कारण महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष हानिकारक व्यवहार हैं। विषय ये है, एक हेडिंग कहें, लिंग चयन आधारित गर्भपात। ये एक हिंसा का प्रकार है। गर्भ धारण के समय या उसके बाद किसी भी कृत्रिम तरीके से बच्चे के लिंग का पता लगाने की प्रक्रिया लिंग चयन की क्रिया है। जेंडर आधारित लिंग चयन गर्भपात महिलाओं पर हिंसा का एक चरम रूप है। नवजात बालिकाओं को जानबूझकर मार देना बालिका शिशु हत्या कहलाता है। लिंग आधारित गर्भपात के कारण वो कौन कौन से हैं? विशेषज्ञ बताते हैं कि बेटों को वरीयता देना, बेटे परिवार की विरासत और वंश बढ़ाते हैं ऐसी धारणा, महिलाओं की अधीन स्थिति, दहेज जैसी कुप्रथाएं, ये सब सामाजिक कारण। आर्थिक कारण में बात सामने आती है, लिंग आधारित गर्भपात के कारण में आर्थिक कारण की जो बात है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चे के पालन पोषण पर होने वाला खर्च, विवाह पर होने वाला खर्च, राजनीतिक कारण। ये लिंग आधारित गर्भपात के कारण में एक बात सामने आती है तो वो बात निकल कर यही है कि कानूनों का कार्यान्वयन कारगर ढंग से न होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, छोटे परिवार की नीति, कैंट और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने यही आती है कि लिंग चयन आधारित गर्भपात के खिलाफ कानूनी प्रावधान है या नहीं, अगर है तो वो क्या है। चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 यानी कि 1971 और वही 2002 में इसमें संशोधन किया गया। गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 यानी कि 1994 PCPNDT अधिनियम एक है और इसमें संशोधन 2003 में किया गया। बाल विवाह, इसके अंतर्गत बात ये सामने आती है कि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया। भारत में कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कों के विवाह के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। भारत में इससे कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध है और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। अब बाल विवाह के कारण भी हो सकते हैं, वो कौन कौन से कारण है कि जिसकी वजह से ये स्टेप लोग उठाते हैं। लड़कियों को जिम्मेदारी या बोझ माना जाता है, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में डर और चिंता, दहेज, कानूनों का कार्यान्वयन सही तरीके से न होना। अब बात करते हैं कि घरेलू हिंसा के प्रति असंवेदनशील, लड़कियों में निरक्षरता, लड़कियों का अनैतिक व्यापार और उनकी बिक्री, यौन संचारित रोगों और HIV एड्स के मामलों में वृद्धि, प्रसव के दौरान जटिलताएं, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे। बाल विवाह के परिणाम, इसके संबंध में बात करते हैं और जानकार बताते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ कानूनी प्रावधान है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, दहेज एक विषय है, इसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दहेज, दहेज का अर्थ है ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिमूर्ति जो उसका कोई प्रकार हो सकता है या दूसरा तरीका हो सकता है या दान देने के लिए सहमति दी जाती है, ये सब चीजें दहेज में आती है। वधु द्वारा वर को या वर द्वारा वधु को, वधु या वर के माता पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ये सारी चीजें दहेज का उदाहरण मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। विवाह से पहले या विवाह के बाद दहेज देना, लेना, मांग करना और अथवा दहेज के लिए प्रचार करना भी अपराध है। कोई व्यक्ति अपने बेटे या बेटी अथवा किसी रिश्तेदार की शादी पर दहेज लेता या देता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत सजा हो सकती है। अब दहेज के खिलाफ कानूनी प्रावधान, इसमें बात आती है दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो संशोधित अधिनियम है 1986। अब घरेलू हिंसा के विषय में बात करते हैं, ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये जो बातें हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। वाकई बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं कानूनी अधिकार के विषय में, महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। ये सारी चर्चा आप जरूर सुने, सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।
6: जिया चले जा चले

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम यहां पर एक चर्चा कर रहे हैं जिसका विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में जान रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, सुनो शारदा 90.8 FM यही कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और इसके अंतर्गत अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घरेलू हिंसा के विषय में। घरेलू हिंसा का अभिप्राय ऐसे कार्य, चूक या आचरण से है, नंबर वन, जिसके अंतर्गत घरेलू संबंध में चाहे वो रिश्ता विवाह से हो या बिना विवाह के साथ रहने से हो, किसी महिला या किसी बच्चे को हानि या चोट पहुंचती है या उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा या तंदुरुस्ती को नुकसान या चोट पहुंचने की संभावना हो। नंबर दो, जिसमें घर के भीतर महिलाओं या बच्चों के प्रति हिंसात्मक दुर्व्यवहार शामिल है। घरेलू हिंसा के प्रकार, शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार की धमकी, यौन दुर्व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार की धमकी, मौखिक भावनात्मक और या मानसिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, पीड़िता और परिवार पर हिंसा का प्रभाव। इसके अंतर्गत बिंदु सामने आते हैं शारीरिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, बच्चों पर प्रभाव। पहले प्रभाव की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक प्रभाव के विषय में। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके अंतर्गत चोटें, टूटी हड्डियां, सिर की चोटें, शरीर के किसी अंग का कटना और आंतरिक रक्त स्राव, पीड़ित अगर गर्भवती है तो गर्भपात होने, समय पूर्व दर्द उठने, भ्रूण को चोट पहुंचने या उसकी मौत होने का भारी खतरा होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इसके अंतर्गत बात सामने आती है बहुत ज्यादा तनाव में रहना, डर और चिंता का विषय, अवसाद, बार बार आलोचना का विषय बनाना, है ना। बच्चों पर प्रभाव, विशेषज्ञ बताते हैं इसके अंतर्गत बात सामने ये निकल कर आती है कि विकास और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आक्रामकता बढ़ती है, मित्रों, परिवार, अधिकारीगण से घुलने मिलने में बदलाव आता है, विद्यालय में कहीं ना कहीं किसी का एक अलग रवैया नजर आता है, या कुछ इस तरीके से बातें हैं। तो इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी प्रावधान क्या है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत पीड़ितों के लिए सुरक्षा संबंधी आदेश, कानूनी सहायता और राहत, इसके विषय में बात करते हैं। निषेध ये है कि ये कानून घरेलू हिंसा पर रोक लगाता है। पीड़िता जहां रह रही है वहां हिंसाकर्ता को जाने से रोकता है, हिंसाकर्ता को पीड़िता से बातचीत करने से रोकता है, घरेलू हिंसा से प्रभावित आश्रितों, अन्य संबंधितों के पास जाने से रोकता है। राहत क्या है? होने वाले खर्च के लिए, हुए नुकसान के लिए, पीड़िता और उसके बच्चे की चिकित्सा और भरण पोषण पर होने वाला खर्च प्रदान करना। कानूनी सहायता क्या है वो बात करते हैं। गरीब, दीनहीन महिलाओं और बच्चों को जिनके पास कानूनी कार्रवाई के लिए साधन नहीं है उन्हें कानूनी सहायता देता है। गरीब और या बेरोजगार महिलाएं जिनके पास साधन नहीं है वो और उनके बच्चे किसी वकील से मुफ्त कानूनी सलाह और कानूनी सेवाएं ले सकते हैं, उन मामलों में जहां गंभीर चोटें हों तो आपराधिक आरोप लगाना, अनैतिक व्यापार, ये सारी बातें एक मुख्य बिंदु के जरिए उसके अंदर सब हेडिंग के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जैसे कि एक विषय है अनैतिक व्यापार, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि अनैतिक व्यापार का अर्थ है वे सभी गतिविधियां जिनमें महिलाओं और बच्चों को जबरदस्ती और या धोखे से देश के भीतर या सीमा पार ले जाना, उनकी बिक्री या खरीद करना शामिल है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि देह व्यापार, गैर कानूनी ढंग से गोद लेना, अंगों का ट्रांसप्लांट, ईंटों के भट्टों पर काम, मनोरंजन उद्योग, घरेलू काम, बलपूर्वक या सस्ती मजदूरी, जबरदस्ती शादियां, भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का व्यापार, लेन देन, बाल विवाह, ये सब अनैतिक व्यापार के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब जाहिर सी बात है कि कुछ कारण होंगे, वो कौन कौन से कारण हैं अनैतिक व्यापार के, बात करते हैं। गरीबी, रोजगार की संभावना कम होना, पुरुष प्रधान संस्कृति, महिलाओं के अधिकारों की समझ कम होना, शिक्षा का निम्न स्तर, महिलाओं से भेदभाव और उन्हें हाशिए पर रखना, दहेज जैसी संस्कृति कारक। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है अनैतिक व्यापारों के पीड़ितों के लिए खतरे क्या है। मजदूरी कम दी जाती है तो रोक दी जाती है या मजदूरी नहीं दी जाती, काम का वातावरण खतरनाक होता है, हिंसक शारीरिक दुर्व्यवहार होता है, नशीले पदार्थ और अन्य प्रकार के नशे की लत होना, इलाज की तरफ ध्यान न देना, मनोवैज्ञानिक सदमा, भावनात्मक सदमा, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अनैतिक व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1956, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, वर्ष 2012 में संशोधित,
यौन उत्पीड़न, इसके विषय में हम बात करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। ये सारी जानकारी वाकई मुझे बताने में, आपसे डिस्कस करने में मुझे भी समझ मिल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और यही एक वजह है कि इतना समय हो जाता है कि मैं ब्रेक भूल ही जाता हूँ। चलिए ब्रेक पर चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूँ गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ। विषय है यौन उत्पीड़न। इसके अंतर्गत बात सामने आती है क्योंकि ये सारी बातें हम बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनो शारदा 90.8 एफएम भी यही कहता है कि प्लीज हम सबको महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। घूरने, इशारे करने, छूने, टिप्पणी करने, यौन आक्रमण समेत यौन प्रकृति का कोई भी अशोभनीय या अनुचित व्यवहार यौन उत्पीड़न कहलाता है। इसकी जाहिर सी बात है कि रूप हो सकते हैं, तो यौन उत्पीड़न के बारे में बात करते हैं। बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न या इसकी कोशिश। दूसरा बिंदु, यौन सहमति के लिए अवांछित दबाव डालना, अवांछित रूप से जानबूझकर छूना, ऊपर झुकना, घेरना या चुटकी काटना, अवांछित कामुक नजरें या इशारे, अवांछित पत्र, टेलीफोन कॉलें या कामुक प्रकृति की सामग्री, मिलने के लिए अवांछित दबाव बनाना, अवांछित यौन छेड़छाड़, चुटकुले, टिप्पणियां या प्रश्न, सीटी बजाना, सिसकारी भरना, दूसरों के सामने स्वयं को कामुक ढंग से छूना या रगड़ना, व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखना, घूरना, चेहरे पर हाव भाव लाना, आंख मारना, दूर से चूमने के इशारे करना या होंठ चाटना, हाथों या शरीर के संचालन से कामुक इशारे करना। ये कुछ ऐसे रूप हैं जिसके अंतर्गत ये बातें आती हैं यौन उत्पीड़न के विषय में। ये सारी बातें हैं। इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उसके विषय में विशेषज्ञ बताते हैं कि सदमे के बाद तनाव संबंधी विकार, बहुत समय तक चिंता, तनाव या डर बना रहना, सदमे के बाद के तनाव संबंधी विकार जैसे कि PTSD के लक्षण हो सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना। यौन उत्पीड़न के बाद कुछ महिलाएं कठिन और दर्दनाक अनुभूतियों से निपटने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। यौन संचारित संक्रमण, अगर यौन कार्य अवांछित या बलपूर्वक हुआ हो तो भी इसके दौरान यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। अवसाद यानी कि उदासी की भावनाएं अवसाद का लक्षण हो सकती हैं, जिनका व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। अब ये जानना जरूरी है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन सारी गतिविधियों के खिलाफ क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप उत्पीड़न की शिकार हैं तो अपने आसपास के लोगों, मित्रों या अजनबियों से मदद लें। अगर उत्पीड़न कॉलेज या विश्वविद्यालय में हुआ है तो कॉलेज की शिकायत समिति या अन्य किसी संवैधानिक निकाय में शिकायत करें। अगर ये सार्वजनिक स्थान पर हुआ है तो तुरंत पुलिस को शिकायत करें, किसी महिला संगठन में शिकायत करें। बात करते हैं यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी प्रावधान के विषय में। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जैसे कि रोकथाम, संरक्षण और निषेध अधिनियम 2013, महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति निषेध अधिनियम 1986, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो। एक और पॉइंट आता है, बिंदु आता है, वैधव्य की समस्याएं। बात सामने आती है, विधवा ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो। भारतीय समाज में विधवा की स्थिति दयनीय है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। उन्हें अब शगुनी माना जाता है और उम्र की परवाह किए बिना उन्हें दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती और अक्सर उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। विधवा की समस्याएं क्या हैं वो बात करते हैं। इलाज संबंधी मुद्दे, इसमें बात सामने आती है कि महिलाओं के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की भारी उपेक्षा की जाती है और इसे वर्जित माना जाता है। आर्थिक वित्तीय मुद्दे, भारत के अधिकांश परिवारों में पुरुष ही मुख्य रूप से कमाने वाला होता है। थोड़ी सी या बिना बचत और बिना नियमित आमदनी के महिला परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे, इसमें बात सामने आती है, आज तक भी विधवाओं को उनके पति की मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता है और उन्हें परिवार में अभिशाप के रूप में देखा जाता है। उन्हें खास तरह के कपड़े पहनने और बर्ताव करने, सादा भोजन करने और खास दिनों पर उपवास करने के लिए मजबूर किया जाता है। कानूनी मुद्दे कौन कौन से हैं उसके विषय में बात करते हैं। आपने अधिकारों से अनजान, खास तौर पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ उस महिला के पास न्यायिक मदद प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होता है। चलिए, जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है और यही सारी बातें मैं एक रिसर्च के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और ये बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अन्य कानूनी प्रावधान एक विषय अभी मेरे सामने आना बाकी है, तो इसके बारे में अगले भाग में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 0120-40602 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप मुझ तक जरूर पहुंचाएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। हम सबका अपना अपना हक है, हम किसी का हक ना मारें और महिलाओं को उनका हक आप जरूर दें।
अदरवाइज महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में यहाँ बात हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि वो सारी बातों को जानेंगी समझेंगी और फिर आपसे आपका हक मांग भी सकती हैं या कानून के जरिए वो अपना हक ले सकती हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
2: अब क्या सुनाए?

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
2: बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की एक कविता पर चर्चा करेंगे। कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आपने पढ़ी तो होगी जरूर और ना पढ़ी हो तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी कविता है और इस कविता के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, साथ में कवि के बारे में थोड़ी सी जानेंगे और थोड़ा सा हम यह भी जानेंगे कि चांद, सूरज या प्रकृति और पर्यावरण से हमारा कैसा संबंध है। हम लोग भी तो उन्हीं के साथ रहते हैं ना, तो हमारा संबंध कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, क्या सवाल हम लोग कर सकते हैं, तो ये बातें और साथ ही आप ये भी जान सकेंगे कि कल्पना करते हुए आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपकी कल्पना की उड़ान उसी तरह से आकाश तक पहुँच जाएगी जिस तरह से चांद पूरे आकाश में अपनी रोशनी, अपनी चांदनी फैला देता है। सिर्फ आकाश में नहीं बल्कि धरती पर भी उसकी चांदनी छिटक उठती है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके जो इच्छाएं हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, वो उड़ान भरती हुई पूरे विश्व में फैल सकती हैं और कुछ भी करने में समर्थ हो सकती हैं। तो उस कल्पना की उड़ान को भी इस कविता के माध्यम से आप बाकायदा एक जगह दे सकते हैं, शब्द दे सकते हैं। तो इन पर भी बात करेंगे, कुछ शब्दों पर बात करेंगे और कुछ बारीकियां जो आप कह सकते हैं कि कविता की हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मोहित भी बैठे हैं। मोहित, आप साथियों को हाय बोलो, नमस्कार बोलो।
3: नमस्कार।
2: साथियों को हेलो बोल दो। तो आप मोहित जो हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है साथियों, जिस तरह से आप शायद अभी इस कविता से बहुत परिचित ना हो, अपरिचित शायद हो, बिल्कुल उसी तरह से मोहित भी बहुत परिचित नहीं है। ये अभी छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं और छठी कक्षा में मैंने इनको ये कविता नहीं बताई है, अभी तक पढ़ाया नहीं गया है इनको भी, लेकिन ये कविता जानते हैं। थोड़े सवाल तो इनके मन में बहुत से हैं, तो उन सवालों पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इस कविता के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, वो किस तरह की कविताएं लिखते हैं। नाम तो शायद आपने सुना होगा और आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो और भी ज्यादा सुनोगे और भी ज्यादा पढ़ोगे। ये एक ऐसे कवि हैं जिनका नाम इतिहास में, इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास मतलब केवल वह इतिहास नहीं जो आप किताब में पढ़ते हैं, बल्कि हिंदी का इतिहास क्या रहा, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में शमशेर बहादुर सिंह को प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। प्रयोग को बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि प्रयोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वही ना जहाँ कुछ नया करते हैं, कुछ नए तरह से शब्दों का प्रयोग कर लिया, कुछ नए तरह के खेल किए या एक्सपेरिमेंट जिसके लिए आप अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हो। तो साइंस के भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप बनाते हो, करते हो, तकनीकी प्रयोग भी बहुत सारे करते हो। तो जहाँ कहीं भी कुछ नया किया उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह ने कविता में तरह तरह के प्रयोग किए हैं और इन्होंने ध्वनियों से खेला है, शब्दों से खेलते हैं, बिंबों से खेलते हैं। बिंब समझ लो, बिंब मतलब चित्र, यानी शब्द को बोलते ही कोई चित्र खड़ा हो जाए, शब्द जब बोले एकदम से हमारे सामने कोई चित्र आ जाए, कविता की कुछ पंक्तियां बोली और चित्र खड़ा हो जाए। तो इस तरह के प्रयोग इन्होंने किए हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता को पढ़ते हुए इन प्रयोगों के बारे में भी जानिएगा। और शमशेर बहादुर सिंह की यह भी विशेषता है कि ये शुरुआत तो इन्होंने प्रगतिवाद से किया था। थोड़ा सा यह भी जान लो कि शमशेर बहादुर सिंह उर्दू भी जानते थे, तो उर्दू का प्रयोग इसमें भी आया है। मैं बताऊंगी जहां पर आएगा तो कैसे उन्होंने उर्दू शैली का प्रयोग किया है। और शमशेर बहादुर सिंह ने तो खुद गजलें भी लिखी हैं। तो ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं ये जानिएगा। और हिंदी उर्दू के दुआब पर खड़े थे, यानी हिंदी उर्दू को जहाँ मिलता हुआ देख रहे थे, तो दुआब पर खड़े थे। तो ऐसी चीजों को भी आप समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। तो चलो इसके पहले कि हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता को पढ़ें, यह भी जान लें कि यह कविता एक लंबी है कविता है। इसके थोड़ी सी पंक्तियां हम कक्षा 6 में पढ़ेंगे। इसके पहले अगर इस कविता को पूरी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके संग्रह से खोज कर पढ़िए। वेबसाइट पर इस कविता का शीर्षक डाल करके खोजिए, मिल जाएगी आपको ये कविता, हिंदी कोश में मिल जाएगी। तो आप इस कविता को पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पंक्तियाँ आपके लिए शामिल की गई हैं, मैं उन्हीं पर चर्चा करूँगी। अब कविता का शीर्षक ही आप देख लो दोस्तों, चांद से थोड़ी सी गप्पें। मोहित, गप्पे करते हो तुम?
3: हाँ जी।
2: गप क्या होता है?
3: किसी से बात करना, जैसे कि अपने दोस्तों से बातें करना ऐसे।
2: अच्छा, तो दोस्तों से जो बातें करते हैं, और माँ से जब बातें करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको गप कहते हैं?
3: नहीं।
2: क्यों?
3: क्योंकि उसमें सीधा बात कहते हैं। गप्पे उसे कहते हैं जो एकदम ऐसे आराम से बैठ के की जाए।
2: ओ वाह, बहुत बढ़िया। तो आप जो आराम से बात करते हो, जिसमें कोई चिंता नहीं होती है, कोई विषय नहीं होता है, बिना किसी विषय के भी जो बातें की जाती हैं, वो गप्पे हो गई। अब आपने पंजाबी सुनी है, पंजाबी शब्द जानते हो थोड़े बहुत, आपके दोस्त तो होंगे पंजाबी।
3: हाँ जी।
2: है ना, तो पंजाबी में बातचीत के लिए क्या शब्द है?
3: हाँ जी।
2: पंजाबी में क्या कहते हैं? गप्पे ही तो कहते हैं, है?
3: हाँ जी।
2: गल गल कहते हैं ना, की गल है आपने सुना होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर संस्कृत आपने पढ़ी होगी, बांग्ला आपने पढ़ी होगी, आपके दोस्त बंगाली भी होंगे, तो बंगाली दोस्तों से जरूर इस पर चर्चा करना। बंगाली दोस्त क्या कहते हैं गल के लिए, बातचीत क्या उनके लिए शब्द है?
3: गप्पे कहते हैं।
2: गप्पे भी कहते हैं, इसके अलावा गल्प भी कहते हैं। गल्प वहाँ पर कहानी के लिए भी प्रयोग होता है, बांग्ला में कहानी के लिए भी गल्प शब्द प्रयोग होता है। तो गल्प का संबंध ये हुआ, इसका मतलब जहाँ तुम सोच लो कि जहाँ कुछ कल्पना भी हो, यानी पूरी की पूरी केवल विषय पर आधारित नहीं हो, बल्कि कहीं की कहीं उड़ान आपके भर ले, तो गल्प का या गप का मतलब ये हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जान लो इस बात को। ये साधारण बातचीत से थोड़ा फर्क है। या हम किसी विषय पर बातचीत करते हैं, जैसे पर्यावरण पर बातचीत करें, या पक्षी पर बातचीत करें, या किसी खास खास मुद्दे पर फूलों पर बात करें, तो वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन यहाँ पर कल्पना की उड़ान की पूरी संभावना है। तो आप शीर्षक से ही समझ पा रहे होंगे कि हम बहुत तरह की बातें, यानी कुछ ऐसी बातें भी जो जरूरी नहीं है कि सामान्य नियम से सही दिखाई पड़ रहा हो, यानी सामान्य नियम को तोड़ते हुई बातें भी होंगी जो आप अपने दोस्तों से करते हो। दोस्तों से करते हुए कहते हो ना, काश हम चांद पर चले जाते, काश पेड़ों में रुपए लगते, काश पेड़ों में टॉफी लगती, है ना, चॉकलेट लगते, तो इस तरह की जो बातें आप करते हो, तो ऐसी बातें जिस जो कल्पना पर आधारित भी होती हैं, है ना, तो वो हो गई गप। चलो अब शीर्षक पर हमने बात कर ली, अब ये भी जान लो कि ये पूरी कविता को कवि ने कैसे अपने को कल्पना इसमें की है। कवि अपने आप को यहाँ पर एक 11 साल की लड़की की तरह कल्पना कर रहा है, एक लड़की की तरह। ये ध्यान रखो, कवि एक पुरुष है, जैसा मैंने बताया शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अपने आप को एक लड़की की तरह कल्पना किया है, और एक लड़की कैसे बातचीत करेगी चांद से, बिल्कुल उसी तरह यहाँ बातचीत की है। तो मैं पहले कविता शुरू करूँ तो थोड़ी सी बताओ कि तुम चांद से बात करते तो क्या क्या बात करते?
3: कि तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते, अगर तुम दोस्त बनते तो तुम कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, तुम मैं धरती में क्यों नहीं आ जाते?
2: बिल्कुल ठीक है, धरती पर आओगे तो तुम क्या करोगे, उसको क्या क्या घुमाओगे?
3: मैं उसे घुमाऊंगा, पूरी धरती दिखाऊंगा, और अगर मैं अगर वो मेरा दोस्त बनता तो मैं भी उसके घर जाता।
2: अरे वाह,
3: घूमता
2: वहाँ पे भी कोई जमीन के लोग खरीद रहे हैं ना आजकल, तो तुम भी शायद वहाँ घर बना लेते, है ना ऐसा कुछ करते कि नहीं, मन करता है?
3: हाँ जी।
2: है ना, तो खैर, तो जो तुम्हारे पास धरती पर इतनी खूबसूरत धरती है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, इस पूरी खूबसूरत दुनिया को उसको घुमाते, है ना?
3: हाँ जी।
2: वो तुम्हें आसमान घुमाता लेकिन तुम उसको धरती घुमाते, और धरती पर क्या क्या सुंदर है वो सब दिखाते, क्या क्या अच्छा है वो सब दिखाने की कोशिश करते, है ना?
3: हाँ जी।
2: चलो, अब इसके पहले कि हम कुछ बातचीत शुरू करें, हम कविता फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कविता को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कविता जब पढ़ते हैं, ये ध्यान रखो बच्चों कि जरूरी नहीं है कि कविता जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल उसी तरह आप कविता पढ़ें, बिल्कुल नहीं। आप अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे पढ़ते समय कविता में से एक अर्थ कहीं ना कहीं संप्रेषित हो रहा हो, कविता से अर्थ निकल रहा हो। तो कविता हम पढ़ते ही अर्थ के लिए है, तो अगर अर्थ कहीं ना कहीं, भावार्थ कहीं ना कहीं पहुंच रहा हो, ये बहुत जरूरी है। तो ये पढ़ते हुए हम कहाँ दबाव डालें और कहाँ नहीं, इस पर चर्चा करेंगे बाद में। चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आपने कविता सुन ली, आपको कई जगह पर ध्यान दिया होगा आपने कि मैं रुक रुक कर पढ़ रही थी, कहीं कहीं दबाव डाल रही थी, तो ये खास तौर से जानबूझ कर मैं कर रही थी कि जब तक हम स्ट्रेस नहीं डालेंगे तो अर्थ समझ में नहीं आता है। इस कविता में भी आप बहुत सी और कविताओं की तरह पाएंगे कि इसमें एक पंक्ति बहुत लंबी है तो बाकी दूसरी पंक्ति कोई एक शब्द की है। तो ध्यान ये देना पड़ेगा कि हम किस वाक्य के किस जगह पर रुकेंगे और कहाँ नहीं रुकेंगे। बच्चों, ये बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन एक बात से आसान हो जाएगी अगर इसको आप बार बार पढ़ेंगे। दो बार तीन बार आप पढ़ोगे, अपने आप लय बनती चली जाएगी और वह लय होगी अर्थ की लय। तो अर्थ की लय अपने आप चलती बनती चली जाएगी, आप समझ लोगे इस बात को। इसका कोई नुस्खा नहीं होता है ये समझने की कोशिश करना। चलिए हम लोग कविता पर बातचीत करते हैं। अब हमने जैसे ही पढ़ा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। मोहित
3: जी,
2: कविता सुनी आपने?
3: हाँ जी।
2: तो तिरछे नजर आते हैं जब कह रहा है, क्या चांद कभी तिरछा भी नजर आता है क्या?
3: हाँ जी, जब वो थोड़ा थोड़ा निकलता है।
2: थोड़ा थोड़ा निकलता है, यानी हो सकता है द्वितीया हो, तृतीया हो, है ना?
3: हाँ जी।
2: प्रथमा तो नहीं होगा, लेकिन द्वितीया तृतीया में हो सकता है, चौथे में, ये बात आपको दिखाई पड़े, चौदहवीं में भी थोड़ा बहुत दिखाईगा, ज्यादा नहीं। तो यानी अभी दूसरा तीसरा दिन हो सकता है, या फिर बारवां तेरवां दिन हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चांद थोड़ा तिरछा भी नजर आएगा। अब एक बात ध्यान रखो, जब हम किसी व्यक्ति से, व्यक्ति की मजाक करते हैं, उस पर व्यंग करते हैं, तो क्या कहते हैं? तुम बड़ा टेढ़े टेढ़े चल रहे हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपने दोस्तों को कहते हैं ना, बड़े टेढ़े हुए जा रहे हो, क्या बात है। तो यहाँ जब चांद को संबोधित कर रही है ये लड़की, तो वो भी मजाक की तरह हंसते हुए खेलते हुए कह रही है कि आप बड़े गोल तो हैं, लेकिन आप कभी कभी तिरछे नजर आते हैं, आप टेढ़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अपने दोस्तों को कहते हैं, तो दोस्तों को, क्या टेढ़े टेढ़े चल रहे हो आजकल, तो लग रहा है हमसे कोई मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं, हमारे साथ नहीं, हमको समझने की कोशिश नहीं, मुझे देखते भी नहीं हो, ऐसा हम लोग अक्सर कहते हैं। तो ये बात ये लड़की भी कह रही है, तो बिल्कुल सामान्य ढंग से जैसे हम लोग अपने दोस्त से बात करते हैं। अब आगे देखो, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। दूसरी बात जो वो कह रही है कि जो तुम्हारा पोशाक है, जैसे इंसान पोशाक पहनता है, कोई बच्चा पोशाक पहनता है, कपड़ा पहनता है, तो उसमें काफी कुछ बना हुआ रहता है, कभी प्रिंट रहता है, जैसे आपके टी शर्ट पर है तो कोई प्रिंट बना हुआ होता है, कोई फूल बना हुआ होता है, कोई चिड़िया बनी होती है। तो आपके पोशाक पर क्या प्रिंट है? तारों का प्रिंट है। जो आपने जो कपड़ा पहन रखा है, ये पूरा का पूरा आकाश आपका पोशाक है, आपका कपड़ा है, तो उस पे जो बना हुआ है वो तारे जो दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके कपड़े का प्रिंट है, वो फूल बने हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब इसको भी बहुत सुंदर ढंग से कवि ने कहा है कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं, जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है यानी जो चांद दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो चेहरा है उसका। अगर चांद को एक बच्चे के रूप में कल्पना करो, अपने दोस्त के रूप में कल्पना करो, तो चांद का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वो उसका चेहरा है और बाकी सब कुछ उसका शरीर है। उस शरीर पर आसमान जो दिखाई पड़ रहा है, उसमें जो पहना हुआ, उसके जो तारे दिखाई पड़ रहे हैं वो उसके कपड़े हैं। तो ये पूरा, ये छोटा मोटा कपड़ा नहीं है, ये पूरा आकाश इस चांद का अगर शरीर है तो कल्पना करो कि ये चांद कितना मोटा होगा, बहुत मोटा होगा ना। पूरा का पूरा आसमान में एक छोटा सा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, तो पूरा आसमान में अगर छोटा सा चेहरा किसी का दिखाई पड़े तो यानी ये जो पूरा का पूरा क्या है, गोल मटोल शब्द उसके लिए, गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोरा चिट्टा जैसा शब्द कोई और भी सुना है तुमने?
3: हाँ जी।
2: क्या बताओ?
3: एकदम गोरे हो तुम, इतने गोरे क्यों हो तुम?
2: अच्छा।
3: और चिट्टा मतलब एकदम सफेद,
2: चिट्टा मतलब सफेद होता है, और मटोल का मतलब क्या होता है?
3: एकदम गोल सा,
2: गोल सा, मोटा सा मटोल। मोटा से बना होगा ना ये, तो मोटा शब्द से बना होगा, तो मोटा मटोल का कोई अर्थ नहीं होता है, मटोल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन कवि ने ये हम लोग अक्सर बोलते हैं ना गोल मटोल, तो एक शब्द अक्सर उसमें निरर्थक होता है। जब भी हम दो शब्दों के जोड़े बनाते हैं तो अक्सर पाओगे कि दूसरा या पहला शब्द कोई ना कोई एक शब्द उसमें से निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका ध्वन्यात्मक अर्थ होता है। अगर कोई अर्थ निकलेगा तो ध्वन्यात्मक अर्थ निकलेगा। ऐसा हम लोग अक्सर करते हैं, हम लोग कहते हैं ना क्या लाल पीले हो रहे हो, क्या गरम हो रहे हो, तो कई बार ऐसे चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यानी कई बार हम लोग दो शब्दों का प्रयोग करते हैं एक साथ, बिल्कुल वही काम यहाँ पर कवि ने भी किया है। तो गोल मटोल दिखाई पड़ते हो और सफेद दिखाई पड़ते हो, तुम्हारा चेहरा, तुम बहुत गोरे दिखाई पड़ते हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात जो आई है वो ये आई है कि कल्पना करके वो कहती है जो तुम तिरछे नजर आते हो, जब तुम्हारा तिरछा रूप होता है तो ऐसा लगता है कि तुम थोड़े हमसे खिंचे खिंचे चल रहे हो, हमारे साथ तुम्हारी बन नहीं रही है, हमारी दोस्ती चल नहीं रही है, तुम हमारे साथ खींचे खींचे नजर आ रहे हो। तो ये व्यंग्यात्मक वाक्य अपने आप में बहुत सुंदर कल्पना है कवि की। तो इस तरह की कल्पना तुम अपने दोस्तों के लिए भी जब करते होगे, दोस्त जब खींचा खींचा चले, तुमसे नाराज हो, तो बहुत तरह के वाक्य तुम लोग बोलते होगे, तो एक पैराग्राफ कम से कम इस पर लिखना और लिख करके आज ही घर जाके लिखना और लिख करके सोचना कि क्या क्या तुम कहोगे उससे, अपने उस दोस्त से क्या क्या कहोगे। केवल यही तो नहीं कहोगे कि खींचे खींचे चल रहे हो, यह भी कहने की कोशिश करोगे कि भाई क्यों, क्या बात हो गई है, चलो कोई बात नहीं, चार दिन खींचे खींचे रहो, फिर तो आओगे मेरे पास ही, ऐसा बहुत कुछ तुम कह सकते हो। तो ऐसी बातें जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा शब्द भंडार होगा, बहुत तरह के शब्द आएंगे और बहुत सारे वाक्य आ जाएंगे। तो उन शब्दों और वाक्यों को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, यह भी तुम जान पाओगे। तो चलो हम लोग अब दूसरे पंक्तियों पर आते हैं। उस दूसरी पंक्ति में जहाँ पर यह कहा गया है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, चारों सिमत मतलब चारों
3: तरफ,
2: चारों दिशाओं में, ठीक है, तो चारों दिशाओं में अपने पोशाक को फैलाए हुए, यानी पूरा जो दिशाएं दिख रही हैं जहां आसमान दिखाई पड़ रहा है, इन दिशाओं में ऐसा लग रहा है तुमने अपने कपड़े को फैला रखा है। कोई अपने लड़की हो, फ्रॉक को फैला रखी हो कोई, मान लो अब ये लड़की बात कर रही है ना, तो लड़की बात कर रही है तो उसको तो ध्यान में वही आएगा, फ्रॉक याद ध्यान में आएगा, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी फ्रॉक को, स्कर्ट को पूरी तरह फैला रखा है। ये चांद कोई मामूली नहीं है, फ्रॉक पहना हुआ और पूरी तरह से उसने फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो कि आपने जब पढ़ा तो आप ध्यान रखिए, मैंने शुरू में बताया था कि ये उर्दू के बड़े अच्छे जानकार थे। ये गो की जो शैली है ना, ये उर्दू की शैली है, ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता रहा है, तो ये उर्दू की शैली का इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया है। खूब है गो की, गो की हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, खूब तो है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप तो मजेदार व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी गो की मतलब है, फिर भी हमको बुद्धू ही निरा समझा है, वाह जी वाह, अब यहाँ बहुत सुंदर संबोधन किया है कि सारे देखो सारी शब्दावली जो प्रयोग की गई है वो सारी शब्दावली व्यंग्यात्मक है। जैसे बच्चे अपने दोस्त को बोलते हैं, अच्छा अच्छा हम जानते नहीं है क्या कि तुम कहाँ से घूम के आ रहे हो, हमें क्या पता नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हमें नहीं पता है कि तुम दूर दूर क्यों खड़े हो। ये सारी बातें हम लोग अपने दोस्तों से करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कल्पना करते हुए लड़की अपने चांद दोस्त से बात कर रही है। चांद उसका दोस्त है और चांद से वो सारी कल्पनात्मक बातें उससे कर रही है और उसमें काफी हद तक व्यंग कर रही है। व्यंग मतलब उसको चिढ़ा भी रही है कि जो तुमने किया है ये मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो जैसे अपने दोस्त को चिढ़ा रही है। तो हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब दूसरी एक और बात उसने कह दी कि जो तुम कर रहे हो तो ये यूं ही नहीं कर रहे हो, दरअसल तुम नॉर्मल नहीं हो, सामान्य नहीं हो, तुम बीमार हो। जब हम लोग किसी को कहते हैं ना कि तुम बीमार हो, ऐसा लगता है तुम पागल हो, दीवाने हो। कभी कभी कहते हैं ना, ये जो तुम्हारी हरकत दिखाई पड़ रही है, ये जो तुम्हारी चाल दिखाई पड़ रही है, ये चाल सामान्य नहीं है, ऐसा लगता है कि ये सामान्य चाल ना होकर के कुछ असामान्य है जो तुम कर रहे हो हरकत। तो हम किसी किसी अपने दोस्त को भी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी जो चाल दिखाई पड़ रही है ये सामान्य चाल नहीं है, जरूर तुम सोच समझ के, या तो हो सकता है कि तुम दीवाने हो, तुम पागल हो, तुम बीमार हो। बीमार मतलब मानसिक रूप से बीमार। हम किसी व्यक्ति को जब ऐसा कहते हैं तो मानसिक रूप से बीमार कहते हैं। तो यहाँ चांद को ये लड़की बीमार घोषित कर रही है। अब आगे क्यों घोषित कर रही है भी देख लो, बहुत सुंदर है। आपको बीमारी है, क्या बीमारी है आपको? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा होगा?
3: क्योंकि वो जब हर 15 दिन में वो बढ़ता और घटता रहता है।
2: घटता रहता है तो 15 दिन के बाद क्या उसका स्वरूप बनता है?
3: 15 दिन में वो पूरा गोल दिखाई देता है। और
2: जब गोल दिखाई देता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
3: पूर्णिमा।
2: पूर्णिमा कहते हैं। और जब बिल्कुल गोल हो जाता है तब क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं ना।
3: अमावस्या।
2: एक दिन ऐसा भी तो होता है कि बिल्कुल गोल हो जाता है यानी चला जाता है, तो अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ। अब ये बताओ कि चांद किसके चक्कर लगाता है?
3: चांद धरती के चक्कर लगाता है।
2: धरती के चक्कर लगाता है। और धरती किसके चक्कर लगाती है?
3: सूरज के।
2: सूरज के चक्कर लगाती है। तो जब ये पूरा साइकिल पूरा हो जाता है तो पूरा 1 महीना होता है, पता है ना?
3: हाँ जी।
2: हाँ, तो 1 महीने के पूरे साइकिल के लिए ये पूरा जो क्रम चलता रहता है, हिंदी के महीने में भी अंग्रेजी के महीने भी आप पाएंगे कि 1 दिन 2 दिन प्रथमा द्वितीया तृतीया करते करते पूर्णिमा तक हम पहुँचते हैं और पूर्णिमा के बाद हम धीरे धीरे 14वीं और धीरे धीरे नीचे उतरता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जो अमावस्या की रात होती है यानी पूरी अंधेरी रात होती है, उस दिन चांद दिखाई नहीं पड़ता। अब इस बात को इस कवि ने एक लड़की के रूप में क्या कल्पना की है? उसने कहा कि ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी बीमारी है, ये सामान्य बात नहीं है, तुम जो रोज ऐसा करते हो ये तुम मानसिक रूप से बीमार हो। ये क्या बात हुई कि किसी दिन छोटे हो जाते हो, किसी दिन बड़े हो जाते हो, किसी दिन एकदम गायब हो जाते हो, किसी दिन पूरे दिखाई पड़ते हो? तो ये जैसे कोई अपने दोस्त के लिए कह रहा हो कि हर दिन तुम एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते हो, तुम्हारा मिजाज ही बदला रहता है, किसी दिन तुम गुस्से में होते हो, किसी दिन प्यार में भरे भरे होते हो, किसी दिन हंसते हो, किसी दिन एकदम गुस्से में। तो ये सारा जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है ये प्रकृति का परिवर्तन को कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कल्पना करते हुए एक लड़की अपने दोस्त के रूप में उसे देख रही है और मान रही है कि ये मानसिक रूप से ये बीमार है ऐसा लगता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो ऐसा करता नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो लगभग रोज एक जैसा दिखाई पड़ता है, थोड़े बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसमें तो रोज परिवर्तन दिखाई पड़ता है, रोज बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इससे एक और बात समझ में आती है मोहित कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। प्रकृति में हर दिन वैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हर दिन कुछ बदलता है। तुम क्या हर दिन कुछ बदलते हो, बताओ?
3: नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बदलता।
2: क्या ज्यादा कुछ नहीं बदलता? लेकिन कोशिश करो कि हर दिन कुछ बदलना चाहिए। बदलना मतलब स्वभाव नहीं, बदलना मतलब कुछ न कुछ अपने जीवन में जोड़ना, कुछ न कुछ नया सीखना, कुछ न कुछ नया करना, कुछ न कुछ नया पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। चाहे 4 सेंटेंस ही पढ़ो, 4 वाक्य ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। चाहे 4 वाक्य लिखो, लेकिन रोज लिखो। रोज कुछ नया करो, रोज कुछ नए शब्द सीख लो, है ना? और उन नए शब्दों का प्रयोग करना सीख जाओ। तो रोज कुछ न कुछ नया करना चाहिए और ये प्रकृति हमें यही तो सिखाती है और हम लोग सीखते नहीं हैं, देखते रोज हैं, रहते उसी के साथ हैं, लेकिन उसकी उस बात को हम लोग उसके उस इशारे को उसके संकेत को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए ना मोहित। तो आगे से ये ध्यान रखना कि हर दिन कुछ नया करो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करो। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ संकेतों में कह दी गई है। तो रोज जैसे ये चांद बदलता है, रोज कुछ न कुछ उसका नया रूप होता है, तो ये बीमारी जरूर मजाक में कह रही है, हंसते हुए कह रही है, कल्पना करते हुए कि लगता है कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो। असल में हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई कुछ नया करता है रोज तो उसको हम लोग पागल ही कहते हैं, सुना है ना, उसको हम लोग दीवाना कहते हैं। जब कोई नया करता है, नई कोशिश करता है, तो उस नई कोशिश करने वाले को हम पहले दिन स्वीकार नहीं करते हैं, धीरे धीरे स्वीकार करते हैं। तो नया तुम कुछ करो, नए गाने बनाओ, नए धुन बनाओ, नई कविता बनाओ, नया पाठ लिखो, तुम देख लो पहले दिन तो तुम्हारे साथी भी हंसेंगे, हो सकता है तुम्हारी बहनें भी हंसेंगी, लेकिन दूसरे दिन से सब लोग स्वीकार कर लेंगे, देख लेना, ध्यान देना। तो नया कुछ करो, हर दिन नया। तो यहाँ यही बात कही है। अब अगर मान लो मैं कहूँ कि बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, बस यानी कि घटते ही चले जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पदबंध। यानी कई पदों को मिला करके जब वाक्य का आधार रूप बनता है, उसको कई पदों को बांध करके, तो उसको पदबंध कहते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि बढ़ते ही चले जाते हैं, तो इस वाक्य को और आगे बढ़ाओ, क्या क्या बढ़ता चला जाता है और क्या क्या घटता चला जाता है।
3: घटता तो ज्यादा कुछ, घटते कुछ नहीं है, बढ़ते रहते हैं बस।
2: घटते कुछ नहीं है, क्यों घटता कुछ नहीं है, तुम तो बढ़ते चले जाओगे, तुम तो अभी और बड़े होगे, लेकिन घटेगा भी तो कुछ, क्या नहीं घटेगा बताओ। तुम्हारे खाना मान लो कि थाली में खाना खा रहे हो, अब खाना तुमने जब शुरू किया तो जितना था, तो क्या अंत में भी उतना ही रहेगा,
3: नहीं
2: घटता जाएगा ना। तो घटता तो और भी बहुत कुछ होगा। तो अब जरा एक लिस्ट बनाना, एक सूची बनाना, और तुम अपने साथियों से भी कहना कि क्या क्या घटता जाता है प्रकृति में और हमारे आसपास, और क्या क्या बढ़ता चला जाता है, कौन कौन सी चीज बढ़ती चली जाती है। तो इन सब पर करना। अब आगे की पंक्ति में आ जाते हैं कि दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। साथियों अपनी कविता को पढ़ करके देखना, इसमें वी अलग लिखा गया है, ल अलग लिखा गया है, कु अलग लिखा गया है, ल अलग लिखा गया है, ये जानबूझकर लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये गलती से छपाई की गलती नहीं है, ये जानबूझकर लिखा गया है। ध्वनि से ही अर्थ निकालने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में उस कवि ने अलग अलग ध्वनियों को लिखा है। तो ये बिल्कुल, इस जब हम बिल्कुल कहते हैं तो इसका दो अर्थ होता है। एक तो होता है बिल्कुल, बिल्कुल मतलब पूरे के पूरे गोल यानी पूर्णिमा, और एक होता है उसका मतलब कि बिल्कुल गोल। जब हम व्यंग करते हैं तो व्यंग का उसका मतलब हुआ तब तुम गोल ही हो जाते हो, तुम तो कहाँ गोल रहे इतने दिन, हम अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं, कहाँ रहे गोल इतने दिन, भाई तुम तो गायब ही थे, कहाँ गोल रहे इतने दिन। तो ये गोल होना मतलब गायब हो जाना, गोल होना मतलब ना होना। तो अमावस्या के बात को कह बताने के लिए गोल कहा जा रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल गोल हो जाना यहाँ कवि कह रहा है। तो ये पूरा का पूरा, इस पूरे वाक्य को कवि ने एक लड़की के माध्यम से बीमारी बताया है, और ये मजाक है और ये व्यंग है। इस तरह का मजाक और व्यंग जो अपने साथियों से भी तुम करते हो, तो इनके शब्दों पर तुम ध्यान देना, किस तरह की ध्वनियां प्रयोग की गई हैं, किस तरह के शब्द प्रयोग किए गए हैं, और इन पदबंधों पर अपने वाक्य बनाने की कोशिश करना। जैसे बढ़ते ही चले जाते हैं पर, या घटते ही चले जाते हैं पर, या गोरा चिट्टा गोल मटोल तरह के कितने और शब्द होते हैं, इनकी भी एक सूची बनाना, कम से कम 20 ऐसी सूची शब्दों के बनाओ। तो इस तरह के काम करते चले जाना, और गो की जगह पर हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उर्दू शैली का है, तो इस तरह अगर हिंदी में हम प्रयोग करते तो क्या और शब्द हो सकता था। तो ये सारे प्रयोग तुम करके देखना। हम लोग इस कविता पर हो सकता है कुछ और चर्चाएं भी आपसे करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। तो आज इस तरह के और आप अभ्यास करते रहो, और हम फिर आपसे चर्चा करते हुए जानेंगे कि आपने क्या क्या किया।
1: अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित ध्वनिशाला। इस ध्वनिशाला में विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर संध्या सिंह, NCERT। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
2: 90.8 FM। मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं।

0: की।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद

0: बिना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना

0: वी वेलकम यू ऑल बैक टू आवर शो. जैसा कि हम स्टार्टअप चर्चा पे चर्चा कर रहे थे विद डॉक्टर दिव्या राजपूत एंड सुरभि मैम. मैम, दिव्या मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज आप काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंक्यूबेट करते हैं रेगुलरली, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है इंक्यूबेटर्स को ऑफर करने चाहिए जिससे कि स्टार्टअप्स को जो है यू नो दे आर नर्चर्ड इफेक्टिवली एंड यू नो स्टेप अप टू द ग्रोथ.
1: इंक्यूबेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. हम इसको बोलते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रिपल हेलिक्स मॉडल. ट्रिपल हेलिक्स जहाँ पे की गवर्नमेंट है, जहाँ पे की कॉर्पोरेट है और जहाँ पे की एकेडेमिया है. सो इंक्यूबेशन अक्सर आपने स्पेशली इंडिया में जब हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं तो इंक्यूबेटर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस से शुरू हुए थे. हमारा स्टेपी जो है या अभी शारदा लॉन्च पैड जो है ये हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हाउस्ड हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि एकेडेमिया में टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं. हमें ये भी पता है कि एकेडेमिया में हमें अच्छे मेंटर्स मिल सकते हैं, एकेडमिक मेंटर्स. लेकिन जो हमारा पर्पस है इंक्यूबेशन करने का वो गवर्नमेंट के साथ सॉल्व होता है या फिर कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज इंडस्ट्रीज के साथ सॉल्व होता है. सो इसलिए इंक्यूबेशन इसके यू नो कोर जंक्शन में है जहां पे ये ट्रिपल हेलिक्स को कवर करता है. सो इंक्यूबेशन में हमारे पास अर्ली स्टेज के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम यू नो कुछ लोगों को सिर्फ आइडिएशन की अपॉर्चुनिटी दे सकें. तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस कहते हैं. तो ये एक साल की हम फेलोशिप देते हैं जिसमें कि यू नो जो एंटरप्रेन्योर है वो देख सकते हैं कि भाई इज एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देम और नॉट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो बने भी हैं कि नहीं. बिकॉज आप इतना ज्यादा रिसोर्स अरेंज कर लेंगे और बाय चांस आपको थोड़े टाइम बाद लगे नहीं ये तो हॉबी थी, मतलब यू नो हाँ दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, अब मुझे आई हैव ग्रोन ओवर इट. तो बेटर है कि आप यू नो यू फेल फॉरवर्ड, यू फेल अर्ली, यू नो. सो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस का प्रोग्राम है. फिर हमारे पास कुछ लेवल के प्रोग्राम्स है जिनको हम बोलते हैं I2P, मतलब आइडिया टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं. हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रयास प्रोग्राम है जिसमें हम उनको अप टू 10 लाख की ग्रांट फंडिंग देते हैं. इनोवेटर लेवल के हैं ये. इसके बाद जो P2M जिसको हम बोलते हैं, P2M सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू मार्केट. तो प्रोडक्ट टू मार्केट में हमारे पास इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है, हमारे पास हाइब्रिड इंक्यूबेशन है और हमारे पास फिजिकल इंक्यूबेशन है. लेकिन ये दोनों जो इंक्यूबेशन के प्रोग्राम्स हैं इसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. और उसके बाद जब आपने मान लीजिए मार्केट भी क्रैक कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया है और आपको लगता है कि हमने एक ज्योग्राफी बहुत अच्छी कर ली और अब हम दूसरी ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं, या हमारे पास एक नंबर यू नो जितने एक लोकेशन से आ सकते थे उतने हमने कैप्चर कर लिए पूरी मार्केट, अब हम दूसरी जगह जाके उसको अपने मॉडल को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. तो हम एक्सेलरेशन के प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं और हम फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं. हम लोग सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को. सो सबसे जो जरूरी एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप पे ताकि वो स्केल अप कर पाए, एक तो है यू नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टअप खुद बनाएंगे. दूसरा है मेंटर्स जो कि हम एज इंक्यूबेटर्स देते हैं, यू नो एक मेंटर प्लेटफॉर्म देते हैं. हमारे यहाँ पे तो इनफैक्ट एक मेंटर इन रेजिडेंस भी है जो हमेशा यू नो स्टार्टअप्स के लिए हाफ अ डे टाइप्स ही इज ऑलवेज अवेलेबल. सो समबडी हुज यू नो बीन एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, ही इज आर JSS एलुमनाई ओनली, हमारे स्टेप के एलुमनाई है एंड ही रन्स हिज मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी. सो ही इज द वन हुज ऑलवेज अवेलेबल टू स्टार्टअप्स. और यू नो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं हु ब्रिंग दैट डोमेन वैल्यू ऑल्सो, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है. सो यू नो फॉर एनी वन पर्सन टू कीप पेस विद एवरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल. सो द एक्सपर्ट यू नो एक्सपर्ट्स दैट वी हैव डोमेन एक्सपर्ट्स एज वेल एज एक मैंने बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल देखा है हमारे JSS स्टेप में वो है जहां पे एंटरप्रेन्योर्स ही एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं. सो हमारा जो एंटरप्रेन्योर नेटवर्क है, इवन हमारा एलुमनाई नेटवर्क है, दैट इज अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी. सो एंटरप्रेन्योर्स की आपस में क्रॉस लर्निंग बहुत स्ट्रांग है बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम यू नो डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव सो मच एक्सपीरियंस. तो या सो वो क्रॉस लर्निंग के हम उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं.

0: सो मुझे लगता है कि इंक्यूबेशन कैन बी वाइड, इट कैन बी यू नो ह्यूज, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सकता है, इसके अलावा यू नो एग्जीबिशंस की अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं, हमारे साथ एग्जीबिशन लगाने का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं. सो मार्केट एक्सेस के लिए जो पॉसिबिलिटी हो वो देते हैं, लेकिन आई थिंक जो कोर पे जरूरी है वो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम. जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो अर्ली स्टेज के, मतलब एंटरप्रेन्योर मैं बन भी सकती हूँ कि नहीं, एक तो ये लेवल, दूसरा फिर I2P, आइडिया टू अ प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट टू मार्केट, और फिर एक्सेलरेशन. सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग रन करते हैं, एंड वी इवन हैव अ प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट इनोवेशन. अगर कॉर्पोरेट कभी सीखना चाहे कि ये इनोवेशन क्या चीज है, तो यू नो वी ऑल्सो हैव प्रोग्राम्स फॉर दैट.
1: दैट्स अमेजिंग. सुरभि मैम, आपका स्टार्टअप भी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो इनक्यूबेट होने से आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदा हुआ है? यू नो व्हाट kind of gain you've gained out of the incubation center?
2: Yeah, so I'll be honest here. I discovered what is incubation bahut der se. Mera idea product tak pahunch gaya tha. By then I was doing a part time work because I needed money to fund my startup. And then when it was in the market, जब हमने launch कर दिया था bakehoney.com platform, we had some 15-20 bakers who were baking on the for customer demands. That's when I wanted an office space. तो मैं ढूंढ रही थी, तब मैंने पढ़ा कि there is something called as incubators and government of India is supporting incubation for every level of startups, like Divya ma'am just explained. So that's when I came to know what is incubation. And luckily I was in Noida and I happened to be at JSS, and that's when I realized the value that a startup gets by being incubated. Of course, the main thing that I learned or that I gained from there was a network. Right? Like she said, there is a network of other startups also. And हर कोई आपका product नहीं बना रहा है. वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो करना. And it is so easy to learn from someone else who's sailing in the same boat. And even on the cost, it is effective because someone else has already gone through the journey of learning. तो अगर मुझे even if I have to hire a vendor for something, मैं किसी आसपास वाले startup से बात कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई vendor चाहिए, दे टेल मी कि अच्छा मैंने ये 3-4 से ट्राई किया, दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड दिस इज द बेस्ट इन क्वालिटी. सो आपकी वो लर्निंग इजी हो जाती है, आपकी वो जर्नी इजी हो जाती है, एंड आपका टाइम बहुत बचता है फ्रॉम दैट नेटवर्क. 1, 2, मेंटर्स हेल्प अ लॉट. हमें लगता है कि सी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट आई ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस कि मैं संभाल लूंगी, बट ओनली व्हेन यू जंप इनटू द पूल यू रियलाइज कि स्विमिंग कैन नॉट बी डन. यस, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपको कूदना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा. एंड देन यू नीड अ पंचिंग बैग. यू नो फाउंडर्स कई बार हम लोग अपने अपने में ही ट्राई करते रहते हैं कि यार ये कर देंगे बहुत अच्छा बन जाएगा, ये कर देंगे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट बिकॉज हम अपने साइलों में काम कर रहे हैं. यू नीड टू गेट आउट एंड टॉक टू पीपल, गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू मेंटर्स से बेटर नहीं बता सकता कोई और, क्योंकि दे हैव सीन सो मेनी अदर स्टार्टअप्स लाइक योर्स, अनलाइक योर्स, एंड दे हैव गेन्ड दैट एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी स्टार्टअप्स विद नो वन पर्सन कैन डू इन अ लाइफ टाइम. So it's always better to have a second point of view or a third point of view, because when you are in an incubator, आपको एक दो नहीं कई लोग मिल जाते हैं जिनसे आप brainstorming कर लेते हो, जिनसे आप नई चीजें सीखते हो कि अच्छा ये technology नहीं, there is a better technology that you can employ, I have read about it, or why don't you attend this session which is talking about this technology, and you gain so much out of it that you don't even realize that you have gained so much of skill. It's such a passive learning. But when it gets applied, you realize कि अच्छा ये तो मैंने यहीं से ही सीखा है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है जरूरी, बट जो इंक्यूबेटर से एक्सपीरियंस आता है देर इज नो मैच टू इट. एंड ऑफकोर्स वेन यू गो फॉर फंडिंग ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस हेल्प्स यू अलॉट.
1: मैम थोड़ा सा आप अपने स्टार्टअप के बारे में ब्रीफिंग दीजिए, although that should have been happened in the beginning, you know, I should have asked you, but थोड़ा सा मैम स्टार्टअप हमारे लिसनर्स के लिए, so that they'll know exactly what you're doing.
2: Sure. So bekhani.com is an aggregator platform. Aggregator platform क्या करता है, अलग अलग तरह के products को, अलग अलग तरह के product manufacturers को आपके सामने लाता है. How bekhani is different is, हम लोग खाली bakery को cater करते हैं, and today there are so many women home bakers.
1: Exactly.
2: And they are working professionally. हम एक तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं, और कैसे सपोर्ट करते हैं कि देर आर कस्टमर्स ऑन वन साइड हु वांट हेल्दी होममेड प्रोडक्ट्स, ऑन द अदर साइड देर आर पीपल हु आर मेकिंग दीज हेल्दी होममेड प्रोडक्ट्स, बट दे डोंट, बोथ ऑफ देम कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, क्योंकि वो होम बेकर शायद आप ही के एरिया में हो, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो होम बेकर की एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, वो केवल बेकिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसे मार्केट नहीं कर सकते हैं. सो वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म ऑन वन साइड. ऑन द अदर साइड कस्टमर्स हैव अमेजिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि टुडे विद इंटरनेट, विद द ग्लोबलाइजेशन, हमें सब पता है कि यू नो किस तरह के डिजाइन ट्रेंडिंग है इन द वेस्ट. बेकिंग हैज कम टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट, सो वी आर ऑल एक्सपोज टू द न्यू ट्रेंड्स इन बेकिंग, बट वी डोंट नो हु कैन मेक दैट फॉर अस. सो वी गिव दैट प्लेटफॉर्म टू द कस्टमर्स कि आप यहाँ पर नए लेटेस्ट डिजाइन्स, लेटेस्ट इंग्रेडिएंट्स, लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, बीइंग डिजाइन्ड एंड बीइंग मेड बाय एक्सपर्ट होम बेकर्स, एंड यू कैन गेट देम कस्टमाइज्ड टू योर रिक्वायरमेंट. सो दैट्स द प्लेटफॉर्म bekhani.com. करेंटली वी आर ऑपरेशनल अक्रॉस NCR इन ऑल द रीजन्स ऑफ NCR एंड इन पार्ट्स ऑफ बैंगलोर.
1: मैम ब्रेक में जाने से पहले दिव्या मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी. स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट फाउंडर, इट इज अबाउट द टीम एज वेल. पूरी टीम है, बट एक विजन है वो फाउंडर का होता है. तो ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एक फाउंडर को जिससे वो अपना विजन, वो इनोवेशन की कल्चर जो है वो अपनी टीम में भी बिल्ड कर पाए टू हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप.
0: आई थिंक सबसे पहला जो स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मंडे मॉर्निंग मीटिंग.
1: The culture.
0: Yes. So, you know, I think startups are not just about profit. Startups are more mission-driven organizations. अब आपका founder का वो mission है, लेकिन वो founder का mission आपकी team में कैसे जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको regular brainstorming उनके साथ करनी होगी. आपको उनके साथ नए products को क्रिएट करने होंगे. सो यू नो बिकॉज सिर्फ आपके कहने से प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते. आपकी टीम अगर आपके साथ है जिनकी डिफरेंट डाइवर्स एक्सपर्टीज है, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स कुछ क्रिएट हो सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि रादर मैं कहूंगी कि कभी कभी ये थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है. बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऐसा लगता है कि हमारी टीम्स यू नो बिजनेस क्रैक नहीं कर पा रही हैं, सेल्स क्रैक नहीं कर पा रही हैं. तो उस केस में हमने ये भी देखा कि कभी कभी हो सकता है कि वो सही यू नो रिक्रूटमेंट ना हो. जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है, जैसे कहीं भी होता है, एकेडमिक्स में होता है, कैन बी यू नो मे बी पीपल नॉट फिट फॉर दैट रोल, राइट. तो एक तो सही हायरिंग, सही हायरिंग में फिर बहुत जरूरी है कि यू नो इफ द स्टार्टअप्स कैन क्रिएट एन ईसॉप पूल, मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ताकि एम्प्लॉयज को भी लगे कि अगर कल को कंपनी ये बड़ी हुई तो मेरा इसमें ओनरशिप है. तो वो ओनरशिप दे पाना. और अक्सर यू नो एंटरप्रेन्योर्स बिकम द बिगेस्ट बॉटलनेक आल्सो, बिकॉज हम डेलीगेट नहीं कर पाते. हमें हर चीज अपने तरह चाहिए बिकॉज हम परफेक्ट हैं. हमें लगता है हमारा काम परफेक्ट है तो हम ही एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, सो यू नो फाउंडर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन एंड नॉट बिकमिंग अ बॉटलनेक. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप कर लेते, पर कुछ तो हो जाएगा, आपके पास आके नहीं तो रुक जाएगा. So, you know, the more people will start delegating power, delegating work, delegating responsibility, okay, and as well as giving ownership to their employees, at least core team. So, you know, every founder should create an inner circle for themselves. There has to be, you know, at least 5 people in your inner circle, including an advisor, maybe an incubator head, maybe somebody. Wo 5 log jin pe aap aankh band karke believe karte hain, right? Create your inner circle. That's one tip. Two, start delegating responsibility. आप खुद सब कुछ नहीं कर सकते. Third, जो आप products market में उतार रहे हैं उनको co-create कीजिए अपनी teams के साथ. ठीक है, उनको opportunity दीजिए. जाइए ना एक retreat करके आइए ऋषिकेश चले जाइए, ठीक है, नैनीताल चले जाइए, एक रिट्रीट करके आइए, ठीक है. सो यू नो अपनी टीम को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने साथ ग्रो करने की, बिकॉज आपने सही कहा वानी कि स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट द फाउंडर, राइट, बिकॉज फिर तो हीरोज बनते हैं ना सिर्फ,
3: एग्जैक्टली
0: जहाँ एग्जैक्टली हाँ. सो यू नो स्टार्टअप तो वहां बनता है जहाँ टीम साथ में चलती है. सो माई सजेशन टू ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स इज क्रिएट योर इनर सर्कल. आपके वो 5-7 लोग जो यू नो आंख बंद करके हर समय आपके साथ खड़े हैं, और उनको फिर गिव देम अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, गिव देम ओनरशिप, मेक देम को फाउंडर्स. एंड बिकॉज हमने हमारे अभी यू नो दो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी फंड रेज किया है. तो एक स्टार्टअप ने 30 करोड़ रेज किया सन फार्मा से, एक और स्टार्टअप ने 40 करोड़ में वो कंपनी इनफैक्ट अक्वायर और हायर डील हुई है. तो सेम यू नो बैलेंस टीम, बहुत बैलेंस टीम है उनकी जो कोर टीम है, और यू नो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है. सो एंड यू नो देवर फुली इन्वेस्टेड इन टू वट देवर डूइंग. सो वंस दैट हैपन्स आपकी टीम का भी आप पे कॉन्फिडेंस होगा. उनको पता है कि ऐसा नहीं कि यू नो आप खुद तो कहीं पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो और साथ में उनको काम पे लगाए हो और उनको कहा है कि स्टार्टअप है तो सैलरी कम मिलेगी. ऐसे नहीं होता, ठीक है. उनका एक फेथ होना चाहिए आप पे. तो वो फाउंडर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो परकुलेट दैट मिशन इन द टीम इटसेल्फ.
1: That's amazing. That's a great advice, ma'am. I think iske saath hum ek chhota sa break lete hain aur hum apni charcha ko aage badhayenge break ke baad.

0: हमारे साथ है मैम दिव्या राजपूत एंड मैम सुरभि. सुरभि मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. आपको कैसे ये आइडिया आया स्टार्टअप का, यू नो, इन बेकरी एंड ऑल दैट? कैसे आपको ये स्टार्टअप का आइडिया आया, प्लस इनोवेशन क्या रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग द सोसाइटल चैलेंजेस?
1: ओके, सो आइडिया कैसे आया, इट्स लॉन्ग स्टोरी. आई जस्ट कट इट शॉर्ट. सो इट वॉज माई सन्स बर्थडे, ओके, एंड वी हैड जस्ट शिफ्टेड. हम लोग दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुए थे एंड विद इन अ मंथ बर्थडे पड़ा एंड हमने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं. सो वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग वेरी वेल. ओके, इट वॉज अ न्यू हाउस, सब गेस्ट्स भी आए थे. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस वार्मिंग एंड हिज बर्थडे. सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. अब बच्चों का जैसे होता है, ही वॉज 4 years एट दैट टाइम, सो ही हैड अ थीम इन माइंड कि मुझे टाइगर चाहिए केक में. एंड एट दैट टाइम हम ढूंढते रहे, वी डिडंट नो अ गुड बेकर अराउंड एंड वी वॉन्टेड अ गुड थीम. सब कुछ परफेक्ट था एक्सेप्ट फॉर द केक. And that's when we felt, yaar, I mean, I know there are people who can make so good cakes, but I don't know how to reach them. And that's when we started working in the hindsight on this idea. But gradually, tab, I was also in my job. मतलब वो आई चीज और चली गई. देन ग्रेजुअली वी रियलाइज इट वंस अगेन. वी फेल्ट कि यार, आई वॉन्ट अस, यू नो, शुगर फ्री ब्रेड फॉर माई मॉम, सॉरी, शुगर फ्री केक फॉर माई मदर, शी इज अ डायबिटिक, एंड सो ऑन. सो देयर वर सो मेनी इंसिडेंट्स विच मेड मी फील कि इसकी रिक्वायरमेंट जब मुझे पड़ रही है, आई एम श्योर देर आर मेनी अदर्स हु नीड दिस. एंड देन आई केम टू नो अबाउट होम बेकर्स एंड पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग दिस. तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? That's when I felt कि we need to build this as a platform. हमने पहले शुरू में खाली content शुरू किया कि क्या सही है क्या गलत है. And as a mother, I felt कि ingredients are important for my children. So we started writing about all of that. We were a small team of 3-4 people. हम लोग बस लिखते थे. And फिर हमें bakers ने खुद approach किया. We did a small event, bakers आए, and we realized कि there are so many of them. ओनली इन नोएडा कि जो लोग इस तरह की बेकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, हु आर कॉन्शियस ऑफ इंग्रीडियंट्स, हु आर कॉन्शियस ऑफ डिजाइंस एंड हु फील फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड नॉट जस्ट केक्स. आप जो डेली बिस्किट्स खा रहे हैं, वी डोंट रियलाइज उसमें कितने केमिकल्स जा रहे हैं, हाउ अनहेल्दी इट इज, इवन इफ इट इज सेट टू बी, यू नो, हाई फाइबर और लो शुगर, इट इज स्टिल हैविंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स. सो देर इज अ लॉट वी कैन डू अबाउट चेंजिंग आर ईटिंग हैबिट, इम्प्रूविंग दैम विद ओनली सोर्सिंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस. सो दैट्स वेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग टूगेदर दीज बेकर्स एंड मेकिंग इट इन टू अ प्लेटफॉर्म विच इज बेनिफिशियल ऑन बोथ द साइड. दीज बेकर्स गेट देयर बिजनेस, दे आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड एज अ कस्टमर आई नीड दैम, एंड दैट्स वेन वी मेड दिस प्लेटफॉर्म. नाउ अबाउट इनोवेशन, ऑफ कोर्स इनोवेशन इज नीडेड एट एवरी स्टेप. अगर आप वो कर रहे हो जो कोई और कर रहा है, तो आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम को ज़्यादा एक पॉइंट के बियॉन्ड सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो एक सेम ही तरीके से आप अटैक कर रहे हो ना उसको. सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन द सोसाइटी, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो प्रॉब्लम पूरी तरह से आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, वेदर इट इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर पिक्चर, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू, यू नो, एनवायरमेंट, इनोवेशन इज नीडेड. एंड इनोवेशन डजंट नीड टू बी हाई टेक, यू नो, इनोवेशन कैन बी एज स्मॉल एज रिप्लेसिंग अ प्लास्टिक विद जूट बैग. You know, so it's a small innovation, but it is an innovation in itself because you're breaking the barrier.
0: I've read it somewhere that, you know, serious innovation is greater than invention.
1: Right. Maybe. You don't need invention.
0: We don't need invention. Divya ma'am, my last question is for you. आपके हिसाब से ma'am, जो भी women entrepreneur हैं, जो विमेन हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनको क्या वो पीस ऑफ एडवाइस होगी जिससे वो जो सोसाइटल चैलेंजेस फील करते हैं, वो चैलेंजेस को वो कवर अप कर पाएं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएं?
2: मेरा सबसे जो आई थिंक शुरू का सजेशन होगा वो ये रहेगा कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए. ठीक है, फॉर विमेन, विमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक सुरभि सेड थोड़ी देर पहले कि यू नो वाई जस्ट एंटरप्रेन्योर्स, हर वुमेन के लिए ये ज़रूरी है. पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अब आप यू नो सिर्फ एक बिजनेस ओनर नहीं है, अब आप एक

0: लीडर भी बनने जा रही हैं. सो जब आप लीडर बनने जा रही हैं तो आपके लिए आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बट अदरवाइज आपका बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो एक आप अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए. जो मैंने बोला किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है एक आपका इनर सर्कल, ठीक है, वो लोग जो आपके लिए अवेलेबल हैं. किसी तरह का यू नो आपको किसी मीटिंग में अचानक जाना पड़ेगा, ठीक है, और वाइल मे बी यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अचानक जाना पड़ेगा तो घर में कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. तो सबसे पहले आपके दिनचर्या को स्टडी कीजिए, देखिए आपको आपकी अगर आपके बिना वो चीज चले, चाहे फिर वो आपका घर हो चाहे आपका बिजनेस हो, आपके बिना अगर वो जगह चले तो उसके लिए कौन चाहिए? आपका रेप्लिका चाहिए या यू नो कोई लो स्किल्ड वर्कर भी चल जाएगा? तो सबसे पहले अपने रिसोर्स एलोकेशन करिए, फिर देखिए कि फंड्स कहाँ चाहिए. ठीक है, हम अक्सर अंडर फंडिंग की वजह से हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे तुम तो कितने टाइम से स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हो. सो वो शायद यू नो बहुत ज़रूरी नहीं है करना, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपने प्री प्लान कर लिया तो पहले अगर हो सके तो एंटरप्रेन्योर जैसे ही आप बनने की सोचें तो 6 महीने प्लानिंग कीजिए, आपकी रिसोर्स प्लानिंग कीजिए, फंडिंग के रिलेटेड, मैन पावर के रिलेटेड. अगर आपको आपके माइनस वो जगह चल सकती है कि नहीं चल सकती है, ठीक है, वो सोचिए, एक्सपर्ट्स अरेंज कीजिए. आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप कीजिए और एक आपका इनर सर्कल क्रिएट कीजिए. सो मेरा ये सजेशन रहेगा, 6 months ऑफ गुड प्लानिंग कैन एक्चुअली सेव ईयर्स फॉर यू. सो वो एक मेरा सजेशन रहेगा टू ऑल वेमेन एंटरप्रेन्योर्स. और फिर जब एक बार आपने रिसोर्सेस अरेंज कर लिए तो उसमें 100% कूद जाइए. आप उसको 2 से 3 साल देखे देखिए, आपको मजा आ जाएगा. सो मेरा ये बस ये सजेशन रहेगा हमारी वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए.
1: सुरभि मैम, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वुमेन स्टार्टअप फाउंडर, फॉर ऑल द वुमेन स्टार्टअप फाउंडर्स आउट देयर.
2: सी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ टफ जर्नी, एंड जो चीज टफ नहीं है उसमें मजा क्या है. सो face it, if you have decided, it is a roller coaster ride, but maza aayega. And ultimately what you want is something that you should be clear on. Aapke dimag mein clear hona chahiye, mera ultimate gain kya hai, mera ultimate goal kya hai, mujhe kitne time mein kya achieve karna hai. Set your goal right, and like Divya ma'am said, keep your support system ready so that you can juggle between so many things, because juggling is important for you. To be a founder, be it a man or a woman, you have to juggle with so many things. And women have to do it more. So be ready for that juggle, be ready for the roller coaster ride. It is rewarding at the end, but you have to be patient and you have to be having your perseverance on. So wo aap jab tak patiently dheere dheere aage badhte jayenge and apna goal sahi rakhe, goal set rakhe, so there is no looking back.
1: We say that dreams which are not, you know, which don't scare you aren't big enough.
2: Right.
3: Absolutely.
1: So, true. You need to get a little bit scared and then dar ke aage jeete, like we all say.
2: Yes.
1: So, with this, I will conclude this startup charcha. I wish to thank Divya ma'am and Surbhi ma'am for coming here and, you know, sharing their insights and thoughts and their journey with us. Aur, I'm sure hamare jo shrota hain aur jo bhi hamara show dekhenge, unhe ek bahut hi zyada inspiration milegi, especially to the women jo ki ek entrepreneurial journey apni shuru karna chahte hain. Unke liye ek bahut badi inspiration hogi, word of thoughts honge, and they can move ahead successfully. Thank you so much.
4: अभी आप सुन रहे थे विमेंस एंटरप्रेन्योर्स थीम पर आधारित ये स्टार्टअप चर्चा. इस चर्चा में शामिल थी डॉक्टर दिव्या राजपूत, द स्टार्टअप पॉलिसी एक्सपर्ट एंड इनक्यूबेशन हेड एट JSS. दूसरी हमारी गेस्ट थी डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, अ लीडरशिप एंड स्किल कोच. और तीसरी मेहमान रही मिस सुरभि गुलाटी गुप्ता, द इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर ऑफ अ विमेंस बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. और इस प्रोग्राम को संचालित कर रही थी, या यू कहें कि मॉडरेटर थी, मिस वाणी कपूर, शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन से. आशा करता हूँ कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा. निश्चित तौर पर खासकर उन महिलाओं को जो इस क्षेत्र में आकर बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती हैं, और फिर कहते हैं ना कि एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है. तो ये परिचर्चा आपको कैसी लगी, 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा। सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
2: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
1: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
2: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
1: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
2: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
1: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: क्या आपको पता है डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
2: खुद को और अपने परिवार को डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
1: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
2: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
1: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
2: पूरी बाह वाले कमीज पैंट और मोजे पहने
1: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
2: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
1: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
2: फ्रिज के पीछे नीचे की

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन को ताऊ की तरफ।

से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश
2: नमस्कार मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, अस्तरों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
1: क्या हुआ बेटिया?
3: डॉक्टर साहब,
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ओले ओले ओले, हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है,
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो श्रोता 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो

शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन्मदिन मुबारक हो तारा।

0: कचरा तो गाँव वाली बाई और मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: क्या मैं टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा।

0: नहीं करेंगे कचरा पार्टी।
1: हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
4: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
5: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
4: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
5: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अप्पा।
4: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
4: बहुत अच्छे तरह। हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
4: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
6: नहीं चंदन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
4: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
5: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं।
4: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह, अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार किसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
4: अरे, ये क्या खुसर खुसर चल रही है।

0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
1: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.